लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मिली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी चाहे ज्यादा लंबी ना हो, पर जितनी भी हो बेहतर हो, जिसमें ईर्ष्या द्वेष वैर भाव ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। आइए सुनते हैं सच्चाई फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कर्म से।

दोस्तों, हम चाहते हैं कि समय धीरे धीरे चले और यहीं पर थम जाए और हम आपके साथ बातें करते रहें, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि समय तो अपनी ही गति से चलता है और हमें भी अब जाना होगा। अब भोर सुहानी से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026 सुबह की 5:53 और 54 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का रहेगा कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान का।

गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:10 पर। 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज सवेरे का। 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम म्यूजिकल तिल लगी।

दिल का मेल बॉक्स, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर। तस्वीर, इस कार्यक्रम को सुनिएगा सुबह 11:10 पर।

12:10 का समय रहेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो कार्यक्रम का घर आंगन दोपहर 1:10 पर सुनेगा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा किसान की बात दोपहर 2:30 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच

संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। श्री हनुमान के स्मरण से, इनकी भक्ति से जीवन के संकट टल जाते हैं। आइए मंगल की प्रभात प्रथम वंदन करें श्री हनुमान के चरणों में। अर्पण का भाव लिए मुक्ता है आज आपके साथ। सुप्रभात।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: कुर्बानी की। कुर्बानी इंसान को किसी भी मौके पे देनी पड़ सकती है। जब आप अपने आप को 100% सरेंडर कर देते हैं अपने रब के सामने, 100% जब आप सरेंडर कर देते हैं, आपने जब सरेंडर कर दिया तो आप भूल जाएं उसके बाद कि आपने कुछ सोचना है या कुछ समझना है, उसके बाद जो होगा वो आपका रब ही करता है और करना भी रब ने ही है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब हम इस सोच के साथ चलते हैं तो किसी भी चीज को हम कुर्बान कर सकते हैं रब के।
1: और यकीन रखना है अल्लाह जो करता है
0: वो बेहतर ही होता है। तो हज के अयाम जारी हैं और तमाम हाजी साहिबान के लिए हम बस यही दुआ करते हैं कि वो खुश और खुर्रम तरीके से लौट कर आए। हम उनकी जो है सलामती की दुआ करते हैं, सलामती के साथ वो वापस आए। और उनसे गुजारिश ये भी है कि हम सब के लिए वो दुआ गो रहे, ताकि ये जो पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर पूरी दुनिया में जो अभी मामले बने, हालात जो पैदा हुए, उन पर अल्लाह ताला करम करे, उन पर रहम करे, हम सबके हाल पर रहम करे और ये थोड़ा हालात जो है वो संभल जाए।
1: बिल्कुल।

0: सोच ने आप पे रूल करना शुरू कर दिया तो आप परेशान हो जाते हैं। बेहतर यह है कि आप उस सोच पर रूल करें और आप अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक अप्रोच के साथ आगे बढ़े।
1: बिल्कुल तबरेज, आपको नहीं लगता कि आज का हर इंसान परेशान है? सबके अपने अपने दुख हैं, सबकी दास्तान गम अलग है, और अगर ऐसे हालात में खुशी के चंद लम्हात मैसर हूं, इससे बढ़कर हमारी खुशनसीबी क्या हो सकती है?
0: बेशक, देखिए यही बात मैं कह रहा था ना कि हमें हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हर हाल में जब हम खुश रहने की कोशिश करते हैं उससे हमारा जो वो वक्त होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि एक बड़ा ही प्यारा सा कोट है कि ये वक्त नहीं रहने वाला।
1: बिल्कुल,
0: चाहे आप इस बात को खुशी में सुने तो थोड़ा दुख होगा कि ये वक्त नहीं रहेगा, अगला वक्त पता नहीं क्या लेकर आएगा। जब आप उसकी बात को गम में सुनते हैं कि ये वक्त नहीं रहने वाला, तो आपको खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए वक्त तो चला जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि जो वक्त आपके पास है उस लम्हे को आप खुशी से गुजारें, उसमें अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अप्रोच रखें। देखिए होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने लिखा है, जो रब ने लिखा है, ईश्वर ने लिखा है, लेकिन जो होगा सो तो होगा, लेकिन क्या जो अभी हो रहा है उसको मैं जी रहा हूं? मैं नहीं जी रहा हूं क्योंकि मैं वो चीज सोच रहा हूं जिसका मुझे पता ही नहीं, मैं कल सोच रहा हूं जबकि कल होता ही नहीं है,
1: क्योंकि हम आज में जी रहे हैं,
0: कल होता ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: जो होता है वो आज ही होता है। हाँ, बीता हुआ कल है।
1: बिल्कुल,
0: जो चला गया
1: वो भी माजी बनकर तो चला
0: गया, वो चला गया।
1: बिल्कुल,
0: वो था क्योंकि आज है ये कल होगा।
1: बिल्कुल,
0: क्यों ये चला जाएगा? कल जो आने वाला है, कल आएगा नहीं, कल भी आज ही होगा। जब हम उसमें दाखिल होंगे हम आज में होंगे, तो वो चीज समझने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, दुनिया भी हंसते मुस्कुराते इंसानों को बड़ी खुशदिली से कबूल कर लेती है।
0: बिल्कुल,
1: ये जरूरी नहीं कि अपने अंदर खुशी का माहौल पैदा करने के लिए किसी पुरफजा या हसीन वादियों का रुख किया जाए, बल्कि लोगों के साथ तकल्लुफ गपशप भी फजा बदल सकते हैं।
0: तकल्लुफ गपशप जब हम यारों दोस्तों में करते हैं वो भी एक बड़ा अच्छा सुकून पल होता है, वो भी बड़ा एक बहुत हसीन पल बन जाते हैं, और जब हम याद करते हैं अपने कुछ यारों दोस्तों के साथ बिताए हुए पल, वो भी कभी कभी हमें खुशी देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें हमेशा वो पल याद करने चाहिए जिनने हमें खुशी दी, हम उन पलों को क्यों याद करते हैं जिनने हमें दुख दिया?
1: बिल्कुल सही,
0: आप समझ रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हसीन पलों को पैदा करें।
1: बिल्कुल सही,
0: हसीन पल कोई लेकर नहीं आएगा, तोहफे में नहीं मिलेंगे।
1: बिल्कुल,
0: आपको पैदा करने पड़ेंगे,
1: ये खुद बनाने
0: पड़ेंगे। अपनी फैमिली के साथ बैठे कुछ हसीन पल वहां बनाएं, अपनी बच्चों के साथ बैठकर बात करें।
1: बिल्कुल,
0: आप अपने यारों दोस्तों में जाकर कभी वक्त निकाल के उनके पास बैठे, उनके साथ कुछ लम्हे बिताएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
1: अगर इंसान अपनी बातों या गुफ्तगू में ज़राफ़त को शामिल करें तो इंसानी ज़हन में खुशगवार तब्दीली रोनमा होती है, और कहा जाता है जो लोग हंसते मुस्कुराते नहीं वो असल में बीमार तस्वीर किए जाते हैं,
0: बीमारी होते हैं वो लोग जो हंसते मुस्कुराते नहीं है, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत है।
1: बिल्कुल,
0: मुस्कुराना सुन्नत जब कहा जाता है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी दलील है। अगर हमारे प्रॉफिट ने मुस्कुराने को सुन्नत रखा है
1: तो इसका हमें भी मुस्कुराना चाहिए,
0: इसका मतलब इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी बात होगी जो शायद अभी हमारे जहन।
1: मुस्कुराने से सेहत पर मुस्बत असर।
0: बिल्कुल, आप जब मुस्कुराते हैं आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, आपको कंडीशनिंग करनी पड़ती है अपने दिमाग की। ये सारा जो मामला है कंडीशनिंग का है। जब आप अपने आपको कंडीशनिंग करते हैं कि मुझे मुश्किल हालात में भी कैसे मुस्कुराते निकलना है, आपके हालात भी नॉर्मल हो जाते हैं, आपको बहुत ही अच्छा वक्त देखने को मिलता है।
1: एक सेहतमंद इंसान का जहन खुले अंदाज में हंसने और मुस्कुराने की ख्वाहिश महसूस करता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने माजी को याद करके बेहसें और अपने बचपन की शरारतों को याद करके लुत्फ अंदोज होना भी एक हुनर है।
0: बिल्कुल सही, किसी शायर ने बड़ा प्यारा कहा है कि माजी की रुसवाइयां भी अच्छी लगती हैं। कभी कभी आप माजी की जब रुसवाइयां याद करते हैं उस पर भी आप मुस्कुरा देते हैं, और वो जो वक्त होता है जो बीत गया होता है वो भी आपको कभी ना कभी आपको मुस्कुराने में मजबूर कर देता है। और आप याद करें कुछ ऐसे पल जो बहुत पहले बीत गए हैं, जिस पर आपने उस वक्त खुदा न खास्ता कुछ ऐसा वक्त रहा होगा जब आप उस बात पर रोए होंगे, लेकिन कभी आप बैठ के सोचे वो पल भी बीत गया, आप रोए थे तो क्यों रोए थे? क्योंकि वो पल तो बीतना ही था, और बीतने के लिए अगर आपने वो पल बिताया होता हंसते मुस्कुराते,
1: बिल्कुल,
0: तो आपके लिए शायद वो पल भी बड़ा प्यारा होता।
1: तब ये सब बात तिबी एतबार से भी साबित है कि बहुत सी बीमारियां हंसने मुस्कुराने से दूर हो जाती है। नफ्सियाती एतबार से हंसना और मुस्कुराना जहनी दबाव को काफी हद तक कम कर देता है, और इस तरह इंसान में मसाइल हल करने की एक नई लगन पैदा होती है।
0: बेशक, वो कहते ना कि जिंदगी चलने का नाम है, रुकना कहीं

0: हमें रुक मतलब रुक नहीं सकते हम, और रुकते हम बस वक्त उस वक्त है जिस टाइम हमारा बुलावा आ जाता है, जब हम इस दुनिया फानी को अलविदा कह जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उससे पहले हमें चलते रहना है, और चलना भी है कि पॉजिटिव सोच के साथ चलना है।
1: बिल्कुल,
0: मैं चल रहा हूँ मेरी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, मैं चल रहा हूँ मेरी वजह से माहौल ऐसा प्यारा बनना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: मैं चल रहा हूँ तो मेरे को अपने साथ चलते चलते कुछ और लोगों को भी लेके चलना चाहिए,
1: बिल्कुल सही,
0: तब जाके जिंदगी का असल मकसद हासिल होता है।
1: तबरेज़ साहब, दरअसल एक अच्छा इंसान जिंदगी को मुस्बत तर्ज फिक्र से देखता है, आने वाली तमाम रुकावटों को हंस खेल कर दूर कर देता है, इसलिए हम सबको मिलकर हंसना मुस्कुराना चाहिए और इसमें दूसरों को भी शामिल करना चाहिए।
0: बेशक, उनका पूरा पूरा हक बनता है कि जब हम मुस्कुराएं तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मुस्कुराना चाहिए। देखिए, मुस्कुराना या हंसी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से घटता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें हमेशा अपना दुख अपने यारों दोस्तों के साथ बांटना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ बांटना चाहिए, वो कम हो जाएगा, और साथ ही अपनी खुशी बांटनी चाहिए, वो दुगनी चुगनी हो सकती है और हमारी वजह से बहुत सारे लोग खुश हो जा सकते हैं।
1: तबरेज, मुझे लगता है सामीन और आपके लिए सुबह सुबह एक चुटकुला पेश किया जाए, एक कथा की सूरत में।
0: बहुत बढ़िया,
1: ताकि दिन भर आप मुस्कुराते रहें, यही हमारा मकसद भी है। इस कथा में शायर बीमा कंपनी के एजेंट की बातों की अकासी करता है। शायर कहता है कि एक बीमा कंपनी का एजेंट मेरे पास आया और लाइफ इंश्योरेंस कराने के फायदे कुछ इस तरह मुझे समझाए। आओ कराएं हमसे बीमा, छोड़े सब अंदेशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है। खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
2: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
2: क्या
3: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं 1800-112100 पर।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
7: पर क्या कर सकते हैं?
6: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
8: आओ चलें और एक नया रास्ता चुनें, जिंदगी की असली पहचान बचाएं और बनाएं नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
9: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी

0: आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में

0: आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
1: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहाँ उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीक की प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज

0: और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में CBI ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। CBI का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RGकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। तबरीज, आज 19 मई है और आज वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है, खेल में हार और जीत से कहीं ज्यादा अहम ईमानदारी और एहतराम है।
3: बिल्कुल सही, ईमानदारी के साथ खेलना बहुत ही अहम है और हमें अपने बच्चों को ये सीख देनी चाहिए बचपन से ही कि उन्हें हम ईमानदारी का रास्ता बताएं, उन्हें ईमानदारी का रास्ता समझाएं।

0: और जब खेल की बात आती है तो उन्हें ये पता होना चाहिए, तो खेल और जीत तो हार,
1: हाँ,
0: खेल
1: जी
0: में
1: तो
0: और
1: होती
0: हार भी
1: रहती
0: तो
1: है,
0: चलती रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन खेल में सही तरीके से ईमानदारी के साथ खेलना ही सबसे बड़ा फन है। और देखिए, हम बात कर रहे थे इससे पहले माहौल की भी, खेलों के लिए बच्चों को एक सही माहौल मिलना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: उनको हमें घर से बाहर लाना है, खिलाना है, उनको मौका देना है कि वो खेलों में
1: आगे
0: भी
1: बढ़े।
0: एक्सेल करें, उसके लिए एक अच्छा माहौल हो,
1: बिल्कुल
0: आबोहवा साफ हो, जहाँ पर सांस लेने में दिक्कत ना हो। जब बदबू होती है तो वहाँ इंसान खेलेगा क्या और सांस क्या लेगा,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही,
0: उस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमें चाहिए कि जहाँ पर हम बच्चों को अच्छा माहौल देते हैं, खेल कूद की तरफ उनको
1: रागिब करते
0: रागिब
1: हैं,
0: करते हैं, वहीं हमें उनको हेल्दी फूड भी देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही,
0: खाने पीने की चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की जो डाइट होती है वो डाइट उनके लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि ये उनके फ्यूचर को डिसाइड करती है डाइट।
1: बिल्कुल
0: और अगर डाइट अभी अच्छी दें तो वो आगे के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आज डाइट में कोई भी गड़बड़ हमने कर दी,
1: बिल्कुल
0: जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का जंक फूड की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा है,
1: बिल्कुल
0: हमें चाहिए कि उन्हें उस जंक से हम रोकें, हम उनके लिए घर में अच्छा खाना पकाएं, उन्हें वो खाना दें जो उनकी सेहत के लिए मौजूं हो,
1: बिल्कुल
0: हम उन्हें कोशिश करें समझाने की कि खाना वही होता है जो
1: घर
0: हम,
1: में पकाया जाता है,
0: हाँ, जो घर में
1: बिल्कुल
0: पकाया जाता है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है,
1: बिल्कुल
0: कोई टेस्ट एनहांसर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है,
1: फ्रेश होता है,
0: फ्रेश होता है और साफ
1: बिल्कुल
0: तरीके से पकाया जाता है, साफ सुथरे माहौल में, साफ सुथरे हाथों से। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: और हमेशा हम कोशिश यही करते हैं कि अच्छा खाना बच्चों को दें, क्योंकि हर माँ बाप की यही चाहत रहती है कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छा खान पीन करें,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी नशोनुमा जो हो वो बेहतर हो। और अच्छे खान पीन के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ब्रेकफास्ट जो हमारा सबसे मेजर डाइट होता है, जो
1: बिल्कुल
0: मेजर मील हमारा होता है, वो मेजर मील हमारा कुछ अच्छा हो, पौष्टिक हो, न्यूट्रिशियस हो, तब जाके हमारे पूरे दिन के लिए हमें एनर्जी भी मिलती है,
1: बिल्कुल
0: और ये मेजर मील हमारा पूरा दिन के लिए हमें फ्रेश रखता है।
1: बिल्कुल
0: आज एक बार फिर हमारे साथ शेफ यासीन जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ही, जो एक छोटी छोटी रेसिपी हमारे साथ शेयर करते हैं हर एपिसोड में। आज के एपिसोड में भी वो कौन सी रेसिपी लेकर आए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। शेफ यासीन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में।
2: थैंक यू वेरी मच। आज की रेसिपी बहुत हेल्दी होने वाली है, खासकर बच्चों के लिए। आप 2 कप मूंग की दाल यानी ग्रीन मूंग लें, उससे ओवरनाइट गर्म पानी में भिगो के रखें, और जब उसमें वो स्प्राउट्स निकल जाएंगे तो उसको ग्राइंडर में एक खुरदुरा यानी कोर्स पाउडर कर दें। आप इसमें मिला दें 1 कप ओट्स पाउडर किया हुआ, थोड़ा सा नमक और अपने मन पसंद के कुछ मसाले, और 2 आलू बॉईल किए हुए। ये सारा मैश करके आप थोड़े से बॉल्स बना लें, छोटे छोटे बॉल्स इक्वल साइज के। उसके बाद इन्हें बीच हाथ में रख के थोड़ा ऑयल लगा के फ्लैटन करें, पतला करें, और एक तवे पे घी गर्म करें, और पहले एक साइड से सेके, दूसरे साइड से सेके, और उसे टिफिन में सर्व करें या सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाएं। अगर आप चाहें तो जब आप इनको फ्लैट कर रहे हैं तो बीच में आप पनीर डाल के इनको मोड़ के बॉल्स भी बना सकते हैं, वो भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये स्प्राउट्स हेल्दी टिक्कीज और स्प्राउट हेल्दी बॉल्स बना के आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, टिफिन भी बेच सकते हैं और खुद भी एंजॉय कर सकते हैं।
0: अरे बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार सी रेसिपी को शेयर करने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले इन रेसिपीज को जरूर ट्राई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ यासीन, आज आपका थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे शेफ यासीन, जिन्होंने आज एक बार फिर एक मुख्तसर सी रेसिपी शेयर की, और देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता ऐसी रेसिपी की तरफ, लेकिन हमारे माहिरीन हैं जो हमें बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे करना है, और हर शोबे का एक माहिर होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो हमें उनसे सलाह लेने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनसे सलाह लें, उनसे समझें, उनसे सीखें और उसे अपनाएं।
1: तबरीज, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड फेयर प्ले डे से मुतलिक। खेल का मैदान सिर्फ ट्रॉफियां हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि हरीफ खिलाड़ी का एहतराम करने, कवानीन की पासदारी करने और अंपायर के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करने का नाम है। जब आप ईमानदारी से खेलते हैं तो आप सिर्फ एक मैच नहीं जीतते, बल्कि करोड़ों दिनों पर राज करते हैं, क्योंकि स्कोरबोर्ड सिर्फ नंबर दिखाता है, लेकिन आपका रवैया आपके किरदार की अक्कासी करता है। खेल इंसान को नज्म व ज़ब्त, सब्र और टीम वर्क सिखाता है, लेकिन जब खेल में धोखा, नफरत या बदतमीजी शामिल हो जाए तो इसकी असल रूप मुतासर होती है।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो खेलों में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम खेल को खेल की तरह ही लें, उसे जंग न समझें।
1: बिल्कुल,
0: खेल को अपनी जिंदगी

बेहतर अंदाज से अपनाएं और ये सोचकर उसे अपनाएं कि ये खेल जो है ये मेरी जिंदगी में बेहतरी ला सकता है। तो कोशिश करें एक अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ बढ़े, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं और एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनकर जिंदगी में आगे बढ़ें।

0: भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरएतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वज़ीर आज़म जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तजारत और इकतसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने, बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तहत अज़्म और काबिल तजदीद तवानाई में तेज़ी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीक़ेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज़्यादा शुरका और 50 से ज़्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत माब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वज़ीर आज़म मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज़ से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वज़ीर आज़म के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है, क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकत दारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाल यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभाजाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, उनमें तकनीक और इख्तिरा, पायदारी, काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकत दारी समझौते के नफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमाकारी के रबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस खत्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्याल का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वज़ीर आज़म के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता

0: गोड़ बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: पांच मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज दो रोज़ा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म मोदी इटली की वज़ीर आज़म मेलोनी के साथ दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग दिया जा सके। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलाक़वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें कीं। ये मीटिंग कल जनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जाँच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट BV आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गाँव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसानात की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीज़न में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज़ में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड्स और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ED को RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाब्तगियों और काले धन को जायज़ बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका TMC हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा

0: के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर FIR केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है, जिसमें गुवाहाटी को मरहला एक के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज़ है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR बरकरार रखने की ज़रूरत ख़त्म कर दी है। IFR इजाफी बफर होता है जो सरमायाकारी की कदर में गिरावट से तहफ़ के लिए कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। PIB ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूम के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मंसूबा बंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतालिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुजाकरात जारी हैं। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर्स में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायाँ जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज़ होने से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल की चहसुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुजाकरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरेतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ED को मालियाती बेजाबतगी केस में RG कर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو 73.8 میٹر تو FM 3.5 میگا ہرٹز پہ سمعین محترم صبح 8:45 سپید
3: سمعین پیش خدمت پروگرام ہم سفر یہ پروگرام تہتام واتنوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आरिफ हुसैन। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजामिया के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। सरकार ने मुनशियात के स्मगलरों की सरगर्मियों को बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कारबंद रहने का तहैया किया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस दौरान आज जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा का एहतमाम हो रहा है। इस पद यात्रा को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पद यात्रा में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग शिरकत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पिछले 38 दिनों के दौरान 766 FIR दर्ज किए गए हैं, जबकि 856 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मुद्दत में पुलिस ने 677 किलोग्राम नशीली अशिया भी जब्त की है। गुजरात की एक समाजी तंजीम विश्व ग्राम ट्रस्ट के रजाकारों ने ट्रस्ट के बानी संजय भावसर की सरबरा

0: ही में लोकभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मरकजी सरकार के खवातीन के कौमी कमीशन की चेयरपर्सन विजया के राहतकर, जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जी एम शाहीन और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद अहमद टेंगा ने भी एल जी के साथ मुलाकात की। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आवाम से ताकीद की है कि वो मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में सेल्फ इन्यूमरेशन का अमल मुकम्मल करे। ये बात उन्होंने कल सिविल सेक्रेटरेट श्रीनगर में अपना सेल्फ इन्यूमरेशन कराने के दौरान की कही। काबीना वज़रा सकीना इतू, जावेद अहमद डार और सती शर्मा के अलावा कई मेंबरान असेंबली ने भी अपना सेल्फ इन्यूमरेशन मुकम्मल किया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने मिशन युवा की अपेक्स कमेटी की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में इस मिशन के तहत जारी सरगर्मियों और हसूलियाबियों का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि मिशन के तहत अब तक 1,00,000 से जायद दरखास्तें वसूल की गई हैं, जिनमें से 57,000 दरखास्तें मंजूर की गई हैं। मीटिंग में बताया गया कि मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से 25,000 दरखास्त दहिंदगान के हक में 1,200 करोड़ रुपये के कर्जे वागुजार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम की तब्दीली और मौसम गर्मा की आमद के साथ ही दर्ज हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यूटी के बेशतर इलाकों में खुशक मौसमी सूरतहाल बनी हुई है। ताज़ा मौसमी सूरतहाल के बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
1: 31 तक भी जो है टच कर सकता है यहाँ मैदानी इलाकों में वैली के अंदर, और इसी तरह जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं या कुछ एक जो एडजेसेंट प्लेन्स हैं, खासकर उधमपुर, जम्मू सांबा कठुआ के अंदर, रियासी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 38-39 से लेकर 41 डिग्री तक का भी राइज होगा। 26 ऑनवर्ड फिर से जो है ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, तो दर्जे हरारत जो है फिर से राइज देखा जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेशन ऑफ जे एंड के।
0: इस दौरान जम्मू में गर्मी की लौ से बचने के लिए आवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तैनात डॉक्टर शाहिद हुसैन ने इस बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा।
2: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को, दिन के टाइम जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए, पानी का इंतजाम रखें, और फ्रूट पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
0: जम्मू कश्मीर में ईंधन की मजमू सप्लाई सूरतहाल मुस्तहकम और इत्मीनान बख्श है। ये बात ऑयल इंडस्ट्री के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर हिमांशु शर्मा ने एक बयान में कही है। उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन का पूरा निज़ाम बगैर किसी रुकावट के मुअसर अंदाज में काम कर रहा है। हिमांशु शर्मा ने मजीद कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए LPG सप्लाई को तरजीह दी जा रही है और इसकी फराहमी मामूल के मुताबिक बरकरार है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो पैनिक बाइंग न करें। अदबी मरकज कमराज ने कश्मीरी जुबान में मेयारी अदबी तख्लीक की हौसला अफजाई की खातिर बेस्ट बुक अवार्ड के लिए नामजदगियां तलब की है। मरकज की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस अवार्ड के लिए बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा और गांधरबल अजला से ताल्लुक रखने वाले अदीब और शायर अपनी नामजदगियां जमा करा सकते हैं। मजीद तफसीलात अदबी मरकज कमराज के जिम्मेदारों से हासिल की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने कल इंतजाम के अफसरान की एक मीटिंग में ईद उल अजहा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में मुतलका महकमों के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.3 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
3: आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर, और आप समाप्त कर रहे हैं लाइव शो पयाम सुबह।
4: जी हाँ, पयाम सुबह में आप हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक 7:10 पर हमने आगाज किया था इस प्रोग्राम का और ठीक 11:30 तक हमारा साथ रहेगा, और इस वक्त के दौरान हम कोशिश यही करते हैं कि बेहतर से बेहतर ट्रांसमिशन आपके लिए पेश करें, और सुबह का जो ये आगाज दिन का होता है, सुबह का वक्त जो होता है, ये खुशगवार हो और कुछ पॉजिटिव इसमें हमें मिले, पॉजिटिव सोच आए, पॉजिटिव एटीट्यूड आए, पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़े। तो कोशिश करो कि दो आगाज ये गज बड़ खुशायंद आसुद, तो कोशिश सी आसान कि करो खुशायंद दुच आगाजस मज तुह मदद। तो आज कोशिश करान आज फेयर प्ले डे ओतम जिक्र करो कि आज वर्ल्ड फेयर प्ले डे, तथा बारस मज करो किस खास शख्सियत सो तथा बारस मज कगर गो वह वक्त वो نیوز اس چلائم برو بوزی ایسا غزل تو بیاہ کا کشر کلام تیار تھوم تہ باپ ولو گڑ بوزو کشر کلام تم پت کرو

0: से आप अपने नए खिलाड़ियों में इस फेयर प्ले का जो ये कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करते हैं?
1: जी तब्रेज, ये जो है ना, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये अगर हम सीनियर लेवल की बात करें तो वहां पे मैं समझता हूँ कि वहां पे अभी भी ये चीजें लैग कर रही हैं। तो अगर हमें फेयर प्ले का कंसेप्ट लाना है और हमारे प्लेयर्स में या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन में, सो वो बहुत बहुत नीचे जाकर ग्रास रूट लेवल पर जाके हमें उनको ये चीजें सिखानी है। तो मगर यहाँ पे हम एक रेस में लगे हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि नहीं, हमारे लिए विन इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे ये फेयर प्ले का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहां से अगर हम इन बच्चों को या स्पोर्ट्स पर्सन को सिखाने में कामयाब हो जाते हैं, एजुकेट करने में कामयाब हो जाते हैं, ना कि स्पोर्ट्स में बल्कि उनके लाइफ में भी या उनके लाइफ स्किल्स को भी ये ना बहुत हेल्प करेगी।
0: जी, आप खुद एक एजुकेटर हैं तो आप पे ज्यादा जिम्मेवारी आती है कि आप कैसे एजुकेट करेंगे खिलाड़ियों को, तो उस लिहाज से भी कैसे कोशिश हो रही है और कितनी कोशिश हो रही है इस पर?
1: देखिए, पीपल ऑलवेज लुक एट यू एज अ रोल मॉडल।
0: जी,
1: सो सबसे इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले वो चीजें आपको पहले खुद में डालनी है।
0: जी,
1: एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी लुकिंग एट यू, हु विल बी इमिटेटिंग कि ये कोच जो है या एजुकेटर जो है ये खुद क्या करता है और मेरे से क्या तवक्का रखता है। सो अंटिल एंड अनलेस वो चीज पहले हम खुद में ना लाए, सो हम दूसरे को नहीं बोल सकते कि नहीं आपको ऐसे करना है या ऐसे आपको आगे बढ़ना है। सो मैं इस चीज को लेकर बहुत सीरियस भी रहा हूँ, और अपने जितने भी हमारे आप जितने भी जुड़े हुए हैं कोचेज वगैरह, सो आई बिलीव कि हम हमेशा फेयरनेस को बहुत तरजीह देते हैं, उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, और उसी का रिजल्ट हमें आज देखने को मिला है। चाहे आप क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें, कहीं ना कहीं आज हमारे बच्चे उस काबिल हो गए हैं कि जहां उनका नेशनल प्लेटफॉर्म पे नाम वो बनाने में कामयाब हो गए हैं।
0: बिल्कुल सही। आज के दिन कोई मैसेज देना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए कि आज फेयर प्ले डे है तो इस हवाले से?
1: बिल्कुल, फेयर प्ले डे है। मेरी मैसेज यही रहेगी सबके लिए कि ट्राई टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, और अंटिल एंड अनलेस अगर आप ये चीज जो डिसिप्लिन जो चीज है उसको आप अच्छे तरीके से आगे आगे लाने में कामयाब हो जाते हैं तो लाइफ विल टेक यू इन वेरी यू नो डिफरेंट डायरेक्शंस, उसको मैं बोलता हूँ अगली डायरेक्शंस। अगर आए दिन हम शाम को स्टोरीज देखते हैं तो बहुत हार्ट ना बोलते हैं ना वो चुपती है वो बात है कि ड्रग्स को लेकर कितनी आज परेशानी का सबब बन गई है ये ड्रग्स। सो ये चीज भी मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ फेयर प्ले के साथ। सो अगर हम प्रेशर को हैंडल करने में कामयाब हो जाते हैं, प्रेशर को टॉलरेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो डेफिनेटली यू विल, दिस इज द बेस्ट टूल, दिस इज द हैंडी टूल कि प्रेशर, मेंटल प्रेशर आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं जब भी आपके एडवर्स कंडीशंस में जब एक इंडिविजुअल हो जाता है या आता है तो वहां पे वो ड्रग का सहारा लेते हैं। तो मैं ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन सब यूथ को लेकर कि आप इस चीज को लेकर आगे चलें कि मुझे इन चीजों से कैसे दूर रख सकता हूं मैं खुद को। जब आप खुद को दूर रख सकते हैं सो डेफिनेटली आप अपने सर्कल को दूर रख सकते हैं। जब आप अपने सर्कल को दूर रख सकते हैं ड्रग्स को लेकर, फिर आप अपने सोसाइटी को उससे दूर रख सकते हैं। सो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी उनकी कि जो आपका मेंटल प्रेशर जहां पे आप फिर डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं उस पर कंट्रोल रखिएगा।
0: डॉक्टर साजिद यूसुफ दाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया परवेज।
0: तो सामिन, ये थे साजिद यूसुफ डार, इंटरनेशनल कोच और फीफा के एजुकेटर, जिन्होंने बताया कि फीफा फेयर प्ले कैसे समझाता है और ओवरऑल गेम में फेयर प्ले होना बहुत जरूरी है। और अक्सर फीफा के जब भी मैचेस होते हैं, मैच शुरू होने से पहले एक फीफा एंथम प्ले किया जाता है। हम थोड़ा सा एंथम आपके लिए प्ले करेंगे, बताएंगे आपको क्या होता है ये।

0: सामने अपने ये एंथम की छोटी सी एक झलक सुनी। जी हाँ, ये फीफा का फेयर प्ले एंथम होता है जो हर गेम से पहले चलाया जाता है। उसमें एक फ्लैग भी होता है जो ग्राउंड पे लाया जाता है। उस ग्राउंड पे फ्लैग जो आता है उस पर लिखा होता है माई गेम इज फेयर प्ले। ये कसम उठाता है खिलाड़ी कि मेरा जो खेल है वो बिल्कुल फेयर होगा, मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा, मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा। इस तरह से ये फेयर प्ले खेला जाता है। सामने तुझे बोझा प्रोग्राम पयाम सुबह उसमें वन होता ही जे आज शे पुलवामे से अंदर आज नशा मुक्त भारत अभियान से पेट रैली यथ आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे एंड के श्री मनोज सिन्हा सब जेंड हावन तो जेंड हवित करन रवान तथ रैली तो अत पे शबीर अहमद सब सन सी यम कथ करान वी थोड़ा अख जो मिनट ब्रोह कथ कर अकिस सम वस पुलवामे ग्राउंडस पे तम तट वस रिपोर्टिंग कर नुमाइंद ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर यम कोशिश कर ग्राउंड रिपोर्ट तो ग्राउंड रियलिटी वातन तह ताम तो कोशिश ये सन कि असल हकीकत तह तो बयान कर सा नश कथ कर नश तूत बोड़ वबा अत वबहस पे वनकस कह ख्याल अगर ना आज तमलो सान खत म ग मसल बे पीचीद फिलहाल से जुड़े मैं सी सी कर गुजारिश पे सथियस कि तम कर अत पत बात। शबीर
1: जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुलवामा से शबीर अहमद। शबीर साहब हमें बताइए कि पाद यात्रा के हवाले से जो आज इकदाम उठाए जा रहे हैं मनशियात के हवाले से तो क्या सूरत हाल है इस वक्त पुलवामा में?
2: जी शबीर साहब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वादी जी के दीगर अजला में जो मेगा पद यात्रा का इनकाद गुजश्ता हफ्तों के दौरान अमल में लाया गया है, इस सिलसिले में आज यहाँ जिला हेडक्वार्टर पुलवामा के स्पोर्ट्स ग्राउंड में एलडी मनोज सिन्हा सर जो है अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर एक मेगा पद यात्रा को अगुवाई करेंगे, जिसके लिए तमाम तर जो इंतजाम है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा की जानिब से किए गए हैं। पिछले तीन रोज से इस बारे में बैक टू बैक मीटिंग जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने ली है, जिसके तहत जो है तमाम जो पुलवामा के जो चारों कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं पुलवामा राजपुरा पांपोर त्राल तमाम जो कॉन्स्टिट्युएंसीज से बड़ी तादाद में जो लोग हैं रजाकारा तौर पर इस मेगा पद यात्रा में आज शरीक हो रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से अगर हम देखेंगे पुलवामा कस्बे को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है, जगह जगह पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई है जिनमें से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ के नारे जो है दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं मेगा पद यात्रा के हवाले से आज एक बहुत ही अच्छा माहौल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और स्पोर्ट स्टेडियम पुलवामा की अगर हम बात करेंगे इस वक्त यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं और कुछ देर के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि एल जी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इस यात्रा की वो जो है मेगा पद यात्रा की अगुवाई भी करेंगे। इससे पहले वो यहाँ पर जो है अपना खिताब भी करेंगे और जिसमें मैं आपको बता दूं हजारों की तादाद में लोग जो है जो उधर जो किस वक्त आ रहे हैं और इस मेगा पद यात्रा का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं।
1: क्या नौजवानों को इस मुहिम से बाकायदा तौर जोड़ा जा रहा है?
2: जी अगर हम बात करेंगे असल फोकस तो सरकार का भी यही है, एलजी मनोज सिन्हा बार बार ये कहते हैं कि नौजवान जो है हमारा बौशर है और इस सिलसिले में नौजवानों पर ही फोकस किया जा रहा है। नौजवान ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी पुलवामा जिले की बात करेंगे तो नौजवानों की बड़ी तादाद आज इस मेगा पद यात्रा का एक हिस्सा बनी है, जिसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नौजवान है हमारे जिला पुलवामा का वो मनशियात की इस बिदत को खत्म करने के लिए आगे आना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने गुजशत साल

दौरान मंशियात की जो वबा है इसने कितनी जिंदगियां डुबो दी है, कितने जो है माओं के लखते जिगर उनसे छीन लिए हैं और किस तरीके से एक मेंटल ट्रॉमा से हमारी सोसाइटी गुजरी है, इसको लेकर यहाँ का नौजवान भी बाकी जो दीगर अजला के नौजवान है उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। ये इस बात का अंदाजा है, इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से आज की जो मेगा पद यात्रा यहाँ मुनद होने वाली है इसमें हम देखेंगे नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। अभी मुख्तलिफ जो मकाम से लोग आ रहे हैं, चाहे पांपोर की बात करेंगे, ख्रू की बात करेंगे, राजपुरा की बात करेंगे, पुलवामा की बात करेंगे, न्यूवा पारीगाम की बात करेंगे या यहाँ के जो त्राल के बालाई इलाकों से लोग जो है जोग दर जोग इस मेगा पद यात्रा का हिस्सा बने।

0: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी पयामे सुबह।
1: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
0: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
1: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुब।
2: यारो वन यारो वन।
0: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
1: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर पयामे सुब।
3: सुनो सजना
1: पयामे सुब।
4: तुशन कोर्मुत आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 268.8 मीटर तो एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़न पे। तुझे प्रोग्राम बोजान पयाम सुब सुबह 10 बजने यह वक् प्रोग्राम सूफी सदुक वलि बोजो प्रोग्राम सूफी सदा तो मे दू इजाजत खुदा सवाल।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो कशीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन तम नश सब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।
2: वहीम सदी हिंदिस दोहिमिस हिसस मन यमन सूफी शायरन हुन सठा शोर पे तिमन मन चु लाल साहिब आरगमिस पनुन मुनफर्द मकाम तो मर्तब लाल साहब ने करीबी साथियन तो वर्सन हिंद गुफ्त मूजब पे लाल साहब कहमि मार्च कुनुशत त्रवुह थन चिट्ठी बांधे आरगामी ये गाम चु गुरुर उकुन पहान मशरकी बाल डेकरीपट वाका बाब साबु नाव ओसुख दाऊद मलिक तो माजु ओसुख नाव दौलत दे यम बिजती ददगुरी दाऊद मलिकस त्रनिका तो लाल साहब आव तिज त्रेमि आशिन हिंद

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नश्र सब्दान।
2: समय मोहतरम तो ऐसे सूफी तो ऋषि वचारण पेठी मबनी प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये छ आकाशवाणी श्रीनगर सान्य दुमाला नु करियो हना इंतजार। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पयाम सु प्रोग्राम जारी है। अगली सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं तबरेज मदनी के साथ।
3: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
4: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
3: जहां होंगी

0: दोस्तों अपने नगमा सुना और उम्मीद करते हैं कि ये नगमा भी आपने पसंद फरमाया होगा। जी हाँ, मैडम नूरजहां की आवाज़ में नगमा था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसे एंजॉय किया होगा। आज जैसा कि मैंने आगाज़ में ही आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे ये एलर्जीज़ के हवाले से। ये एलर्जीज़ होती क्या हैं, क्यों होती हैं और इसके पीछे क्या हकीकत है और क्या मिथ्स हैं, इस पर बात करेंगे। और इन सभी बातों पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मधु किया है डॉक्टर रूही रसूल को, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इम्यूनोलॉजी स्किम्स सौरा। जी हाँ, डॉक्टर साहिबा हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में।
1: वालेकुम अस्सलाम तबीर साहब, पहले सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने इनवाइट किया यहाँ पोलन्स के मुतालिक बोलने के लिए, रिगार्डिंग एलर्जीज़ के बोलने के लिए। उसके लिए थैंक यू वेरी मच।
0: जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो अभी मार्केट में बातें चलती हैं कि यहाँ बड़ी सारी दिक्कतें हैं पोलन को लेकर, लोग बहुत शिकायत करते हैं, ये रशियन जो पॉपुलर है उस पर जो फूल निकलता है उससे रुई उड़ती है, उस रुई के हवाले से क्या ये हकीकत है कि उसकी ही वजह से हमें एलर्जीज होती हैं और वही सबसे बड़ा बायस है इन मामलों का?
1: देखिए तबरेज साहब, एक्चुअली क्या है, ये जो पॉपुलर ट्री है
0: जी,
1: ये जो इसका जो फ्लफ है ये फीमेल पॉपुलर ट्री से होता है, ये कॉटनी फ्लफ है
0: जी,
1: ये फ्रूट होता है फीमेल पॉपुलर का। सबसे पहले लोगों को एक मिथ है, उनको लगता है यही पोलन है, जबकि ये पोलन नहीं है। पोलन जो है वो प्रोड्यूस होता है भाई मेल पॉपुलर ट्री,
0: ओके,
1: और ये जो फीमेल पॉपुलर ट्री है ये प्रोड्यूस करता है फ्रूट, पहले फ्रूट प्रोड्यूस करता है, फ्रूट के बाद ये सीड्स होते हैं, इनको समारा कहते हैं। तो इस जो ये सीड जो निकलता है, इसको जो ये इसका जो बाहर ये फाइबर्स होते हैं कॉटनी फ्लफ जो हम देखते हैं, ये प्रोड्यूस करता है। ये एज सच देखा गया, एविडेंस के थ्रू देखा गया, बहुत सारी स्टडीज़ की है कि इसमें एलर्जेनिक मटेरियल नहीं होता, ये खुद एक एलर्जन नहीं है। इसमें मटेरियल होता है सेलुलोज होता है।

0: हेमिसेलुलोस होता है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं विच आर नॉट एलर्जेनिक. मतलब आपको मैं आम भाषा में बताना चाहती हूँ कि ये इंसान को एलर्जीज डायरेक्टली नहीं करता है. अब आप बोलोगे फिर क्या क्वेश्चन है, फिर क्यों लोग कहते हैं इतना सारा फ्लफ है, तो हमें ये एज अ कैरियर है, ये एज अ कैरियर है ऑफ अदर पोलन्स. दैट मीन्स ये जो है ये फ्लफ, ये ट्रैप है, इट्स अ
1: जी,
0: ट्रैप, इट्स अ ट्रैप जिसमें ये बाकी जो पोलन है लाइक
1: एलर्जेंस को कैरी करता है
0: एलर्जेंस, जो
1: जी,
0: बाकी एलर्जेंस है उसमें ये कैरी
1: उनको
0: करता
1: कैरी
0: है.
1: करता है जी।
0: उस एलर्जेंस में कौन कौन से है, ये वो सीजन है जिसमें मैक्सिमम हमें ग्रास पोलन्स होते हैं, लाइक साइनाडॉन है, टिमोथी है, कैंटकी है, ग्रास पोलन जो हमारे यहाँ मोस्ट प्रेवलेंट है, जो हमने एज अ जो हमें क्योंकि हर एक जगह का एक स्पेसिफिक पोलन कैलेंडर होता है, इसीलिए हमने फिर मैं लास्ट 20 ईयर्स से एलर्जी में हूँ, तो हमने भी एक स्पेसिफिक कश्मीर स्पेसिफिक पोलन कैलेंडर सॉर्ट ऑफ बनाया है जिसमें हमें पता है कि हमें कौन कौन से पोलन्स इसमें इस टाइम में ज़्यादा प्रेवलेंट है
1: जी
0: सोसाइटी में.
1: सोसाइटी।
0: तो ये क्या करता है, ये इन्हीं पोलन्स को कैरी करता है. सपोज आपको यहाँ फीमेल पॉपुलेटरी है, यहाँ से आपको घास है नीचे, आप तो देखते होंगे, तो
1: जी
0: ये वो ग्रास का पोलन उसके
1: कैरी
0: साथ
1: करता है
0: कैरी
1: जी।
0: करता है. इन द मीन टाइम आपको बीच में सड़क पे बहुत सारा गंद है, वहाँ पर वहाँ फंगस ग्रो कर रहा है, ये फंगस को भी ग्रो साथ
1: कैरी
0: ले रहा है.
1: करता है,
0: डस्ट आप तो देखते हो हमारे
1: डस्ट बहुत
0: कश्मीर
1: है
0: में कितना बड़ा डस्ट, तो ये डस्ट पार्टिकल्स को भी, और
1: कैरी
0: उस
1: करता
0: डस्ट पार्टिकल इन इट सेल्फ इज नॉट एलर्जन, इट इज़ अ हाउस डस्ट माइट, इट
1: है।
0: इज़ अ डस्ट माइट विच इज प्रेजेंट इन दिस, जिसमें क्या होता है दैट इज ऑल्सो इट्स कैरिंग. और रिसेंट स्टडीज ने दिखाया है नॉट ओनली द बैक्टीरियाज,
1: जी
0: नॉट ओनली द पोलन्स, दे हैव सीन दैट देयर आर सम एलिमेंट मेटल्स ऑल्सो, लाइक केडियम है, क्रोमियम है, दीज मेटल्स ऑल्सो दे कैरी. सो ये जो है ये फ्लफ, इट्स अ ट्रैप कैरिंग दीज पोलन्स, कैरिंग दीज फंगस, बैक्टीरिया एंड सम मेटल्स विच कैरी देम टूवर्ड्स द नोज, या नाक की ओर ले जाते हैं, या आँख
1: आंखों
0: की
1: में
0: ओर लेते
1: जी,
0: हैं, या मुंह की ओर
1: मुंह
0: देते हैं.
1: बिल्कुल सही।
0: देखा गया है जो ये पोलन का पॉपुलर मेल पॉपुलर पोलन जो है उसका साइज जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू द पोलन जो नीचे लंग्स में जाता है. आपका आई बात समझ. सो दैट मीन्स जो लोग कहते हैं हमें एजमा हो गया है इसके साथ हमें COPD, दैट इज़ नॉट दिस, दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ जो लोगों को पता है कि वो कहते हैं हमें फीमेल पॉपुलर है. आजकल आप देखिए हर सोशल मीडिया में जो भी आता वो
1: पेड़
0: बोलता
1: काट
0: है
1: लीजिए। हाँ
0: सुचवाना बुछवर्स, ये आपने देखा
1: हाँ
0: होगा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: परसों से,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये सी कॉटन ची छु पोलन, कितनों
1: कितने
0: को
1: लोग
0: हम
1: समझाएंगे,
0: बताएं, कितनों को मैं
1: अनएजुकेटेड,
0: समझाऊं कि
1: बिल्कुल सही
0: ये
1: सही।
0: एविडेंस बेस्ड है, ये ऐसे ही नहीं है. हाँ अब आप बोलोगे मैडम ये तो करता है, किसी को आंखों में करता है प्रॉब्लम, किसी को तो नोज में, ये क्या करता है एज ए मैकेनिकल इरिटेशन. मतलब अगर आपका पोलन अंदर आंख में गया, नाक में गया, आपने खुजला, एज ए मैकेनिकल नॉट एज ए एलर्जेनिक, नॉट कि ये एलर्जन प्रोड्यूस करता है फिर हिस्टामिन रिलीज करता है, ये एज नॉन मैकेनिकल है बिकॉज इसमें मैंने आपको बोला इसमें देखा गया
1: एलर्जन
0: है
1: नहीं होता,
0: ये एलर्जन नहीं है,
1: खुद ही एलर्जन से
0: खुद
1: नहीं।
0: ये एलर्जन नहीं है. इसके बहुत सारे यूजेस है इस कॉटन फ्लफ के, वो दूसरी बात है, हम उसके बाद में उसमें
1: उस पर
0: मौजू
1: बात
0: में
1: करेंगे
0: बात
1: जी।
0: करेंगे. पहले मैं सबको ये एक मिथ जो है ये जो हम जो देखते हैं विजिबिलिटी जो है हमारी दैट
1: जी
0: इज़ नॉट वट, जो हम देखते हैं वो सच नहीं है,
1: जी
0: ज़रूरी नहीं. ये जो हमारा कॉटन फ्लफ जो सारा यहाँ है
1: फैला रहा
0: दैट इज़ नॉट द एलर्जन, ये मैं सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करना चाहती हूँ कि ये कॉटन फ्लफ एलर्जन नहीं है, बट इट इज़ अ कैरियर, इट इज़ अ
1: सही
0: कैरियर ऑफ अदर पोलन्स,
1: समझ गए,
0: दैट्स व्हाट.
1: बिल्कुल सही आपने सही फरमाया। और कहीं ना कहीं हमें पहले एजुकेटेड होना पड़ेगा,
0: यस
1: हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और माहिरिन से इसके बारे में पूछना पड़ेगा, तब जाकर हम इस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। सामिन हम बात कर रहे हैं आज हमारे खास मेहमान से, जी हाँ डॉक्टर रूही रसूल हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, बात कर रही है एलर्जीज़ की, ये खुद हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इम्यूनोलॉजी स्किम सोरा से, तो इन्हीं से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, इनसे और जानेंगे इन एलर्जीज के बारे में। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।

0: दोस्तों, हमने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह। पयाम सुबह में आज हमारे साथ बनी हुई है हमारी मेहमान आज के शो की, डॉक्टर रूही रसूल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इम्यूनोलॉजी, स्किम्स सोरा। उनसे बातचीत जारी है। डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने कहा कि ये पोलन्स नहीं होते हैं लेकिन ये कैरियर्स होते हैं, और ये कैरियर जब कभी गलती से मुंह से अंदर चला जाए या नाक से अंदर चला जाए तो ये बहुत तंग करता है, उस वक्त क्या करना चाहिए पहले?
1: श्योर, देखिए, जब ये बहुत साल पहले भी ये बहुत हर साल ये हो जाता है इन पे कि फिर एक कमेटी बैठी गई है हमारी इंस्टीट्यूट में 2015 में, तब डायरेक्टर स्किम्स, डायरेक्टर हेल्थ और बहुत सारे लोग जो थे इस कमेटी में, नवी डॉक्टर नवीद, मैं, डॉक्टर गुलाम हसन, सब हम बैठे थे। तो हमने एक कमेटी बनाई थी कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने कोर्ट को दिए, हाईकोर्ट ऑर्डर था तब हमने, फिर क्योंकि तब उन्होंने क्या किया था, तब उन्होंने मास चॉपिंग ऑफ द पॉपुलर ट्रीज की थी, जिससे इफेक्ट होता है बहुत सारा, आपको तो पता है इकोलॉजिकल डिजास्टर है वो, क्योंकि इससे तो ग्रीनरी खत्म होगी और कश्मीर की मैक्सिमम जो इकॉनमी है वो इन बिचारों पे, जो लोगों की है इकॉनमी वो पॉपुलर पे है, क्योंकि आपको पता है टिम्बर का जो डिमांड था, सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो इन्हीं पॉपुलर्स पे था, फीमेल पॉपुलर। तो तब उस वक्त ये हमने किया था, इंटरवेंशन किया था। तो उस वक्त हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमने कोर्ट को दी थी। सबसे पहला था उसमें कि हमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस कैंपेन में हमें क्या करना है, उनको हमको रेज करना है अवेयरनेस, वही अवेयरनेस रिगार्डिंग कि ये जो फीमेल पॉपुलर है ये फ्लफ है, ये किस मंथ में सबसे ज़्यादा होता है, अप्रैल और मई, जबकि पोलन सीजन जो मेल पॉपुलर पोलन प्रोड्यूस वो इससे बहुत पहले
0: शुरू हो जाता है,
1: क्योंकि पोलन ही फिर फ्रूट प्रोड्यूस करता है, फ्रूट ही पर सीड प्रोड्यूस करता है, और ये सीड डिस्पर्शन का टाइम है। सो वी हैव टू टेल देम इट इज बिटवीन अप्रैल एंड मई टाइम। उसके बाद हमें उनको बताना है कि ये जो इसका सीड डिस्पर्शन अवेयरनेस, जैसे मैंने बताया कि कौन से मंथ में ज्यादा सीड डिस्पर्स करता है, वो हमें बताना है क्या करना है। हमें इंडोर क्लीननेस रखनी है और एलर्जन अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। अब आप बोलोगे एलर्जन अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज क्या करनी है, उनको जब बाहर निकालना है उनको मास्क लगानी है, उनको आई ग्लासेस लगाने हैं, आई वेयर, प्रोटेक्टिव आई वेयर लगाना है, उनको आउटडोर एक्टिविटीज लिमिट करनी है, बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है, उनको इनडोर एयर क्वालिटी मेंटेन करनी है, मतलब अच्छी क्वालिटी एयर क्वालिटी रखनी है ताकि मिनिमाइज हो जाए फ्लफ का एक्सपोजर। देखिए क्या होता है, खिड़कियां हम खुली रखते हैं, बेटर है कि खिड़कियां उन दिनों बंद करें ताकि अंदर ना हो। जब बाहर जाते हैं, क्योंकि ये जो पोलन्स होते हैं फ्लफ होता है, ये क्लोथ्स पे क्लिंग करता है, बेटर है जब हम वहां

0: आए, वो क्लोथ चेंज करके दूसरे क्लोथ चेंज
1: पहन
0: लगाए,
1: लें जी,
0: तो ताकि जब हम अंदर आए तो
1: तो
0: हम
1: ये
0: साफ
1: कॉटन अंदर ना
0: सुथरा ना
1: आए।
0: आए।
1: जी
0: दूसरी बात है, हम कपड़े जब धोते हैं हम उनको बाहर डालते हैं सुखाने
1: सुखाने
0: के
1: के लिए,
0: लिए,
1: जी बिल्कुल,
0: तो इन इन में हम बेटर है कि वो स्टैंड अंदर रखे,
1: इन 2 महीनों के लिए।
0: इन 2 महीनों के लिए स्टैंड अंदर रखे, जिसपे ना कपड़े जब सुखाने हो तो स्टैंड पे अंदर रखे, बाहर ना है, ताकि फ्लफ पे
1: इस पे
0: क्लिंग
1: ना
0: ना आ
1: जमे
0: जाओ।
1: जी।
0: तो ये होता है, दीज आर द वेरियस थिंग्स जो हमको इन दोनों पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स में हम उनको बताते हैं, तो टू मिनिमाइज द मिनिमाइज। और हमने दूसरी उनको बोली थी, हाँ जो एरियाज है लाइक घर के पास हॉस्पिटल्स है, पिकनिक स्पॉट्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए चॉपिंग ऑफ फीमेल
1: पॉपुलर ट्रीज।
0: पॉपुलर्स, बिकॉज फ्लफ है, मिनेस क्रिएट करता है, लोग कितना भी कोशिश करें फिर भी खिड़की वहाँ यहाँ से तो
1: आ ही
0: आता ही
1: जाता है,
0: रहता
1: आता
0: है।
1: ही जाता है।
0: तो हमने बोला था वहाँ आप करें, क्योंकि ये इन फीमेल पॉपुलर्स को, इनको इन्होंने क्यों, ये एक्सपोर्ट हुए थे फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, आई डोंट नो इसको क्यों बोलते हैं रूसी प्रेस, दैट आई डोंट नो माई सेल्फ, बट इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका।
1: जी
0: वाई इट वॉज इम्पोर्टेड लॉन्ग बैक, क्योंकि इसका जो कल्टिवेशन है इट टेक्स, ये बहुत जल्दी
1: जल्दी
0: हार्वेस्ट
1: ग्रो
0: होता है,
1: करता है जी,
0: 8 विद इन 8 to 10 years, जबकि अगर आप इसको नेटिव पॉपुलर
1: पॉपुलर
0: जो
1: के
0: होता है,
1: साथ जो,
0: जो कश्मीर का अपना नेटिव पॉपुलर है, वो 40 साल लगाता है, 20 से 40 साल। तो इसीलिए जो फार्मर्स थे, एग्रो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इसको रिप्लेस किया बाय रशियन पॉपुलर। हाँ अब कहीं कहीं ज़्यादा भी होता है कि अगर वो चाहते वो मेल और फीमेल पॉपुलर ग्रो करते, लेकिन क्या हुआ, मेल को उन्होंने ज़्यादा रिप्लेस किया फीमेल
1: फीमेल।
0: पॉपुलर पॉपुलर से ही। तो बेटर है हम रिप्लेस करें फीमेल पॉपुलर्स को मेल पॉपुलर से, मगर अब इतना भी नहीं करना है कि सारे फीमेल
1: फिर
0: पॉपुलर्स
1: खत्म
0: को
1: हो
0: आप
1: जाए
0: मेल पॉपुलर से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि फिर सेक्सुअल इम्बेलेंस हो
1: जी,
0: जाएगी, है ना। और मेल पॉपुलर जो पोलन है वो ज़्यादा फिर कम्युनिटी
1: फिर
0: में
1: वो
0: हो
1: ज्यादा
0: जा
1: फैलेगा
0: जाएगा।
1: जी।
0: जब हमने एलर्जी टेस्टिंग की ना, देखा अपनी एविडेंस बेस में, देखा कि कितना परसेंट है जो मेल पॉपुलर पोलन रिस्पॉन्सिबल है फॉर अपर एयरवे
1: एलर्जीज।
0: डिजीजेज, तो जस्ट 18 to 20% इज, एंड दैट टू जब पेशेंट एलर्जिक होता है टू एक, और अब हमने देखा इट इज नॉट पेशेंट इज एलर्जिक टू वन सिंगल पोलन, देर इज नो
1: मल्टीपल
0: मोनोसेंसिटाइजेशन।
1: जी,
0: मतलब मोनोसेंसिटाइजेशन मीन्स आप नहीं देखोगे कि आपको पॉजिटिव आया सिर्फ एक पॉपुलर पोलन, देर विल बी एसोसिएटेड अदर पोलन
1: जी
0: ऑल्सो।
1: मल्टीपल
0: अगर
1: पोल्स।
0: आपने सपोज मेल पॉपुलर खत्म किया फीमेल पॉपुलर, डज इट मीन कि एलर्जीज खत्म होंगी,
1: नहीं,
0: नो नो वे। अगर आप चॉपिंग कर रहे हैं तो उसे तो इकोलॉजिकली डिसबैलेंस होगी,
1: डिसबैलेंस
0: और
1: होगा,
0: जो इतना हमारा इनको जो इकोनॉमी इस पे डिपेंड है
1: वो भी
0: वो
1: प्रॉब्लम में आ
0: भी
1: जाए।
0: खत्म हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही,
0: सो बेटर है हमें एलर्जी अवेयरनेस स्ट्रेटजीज फॉलो
1: अपनानी
0: करनी
1: है।
0: है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना है और मेडिकल ट्रेनिंग्स भी करनी है। तो उसमें क्या होगा, लाइक जो हम स्टैंडर्ड एलर्जी टेस्टिंग होती है जिसको स्किन प्रिक टेस्ट करते
1: जी
0: हैं, वो देखो मेरे इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो मेरे इंस्टीट्यूट में खाली है। अब आहिस्ता आहिस्ता इट हैज़ इंक्रीज, नाउ इट हैज़ गॉन टू JLM ऑल्सो, बिकॉज वन डॉक्टर ही वॉज वर्किंग विद मी फॉर 10 ईयर्स, नाउ ही शिफ्टेड बैक टू द डायरेक्टर हेल्थ एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड इन JLM। सिमिलरली इट हैज़ गॉन टू द JVC ऑल्सो, दे आर ऑल्सो पिकिंग इट अप, बट आई हैव स्टार्टेड इन 2008, दे आर स्टार्टिंग नाउ, बट इट टेक्स टाइम। वी आर डूइंग 13 for 15 SPTs पर डे, दे आर डूइंग अ लिटिल बिट, बट इट इज़ गोइंग ऑन। सो वट वी हैव टू डू इज, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ वी हैव टू इंक्रीज दिस अवेयरनेस, वी हैव टू इंक्रीज दिस डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, सो दैट पीपल विल इट देम सेल्व कम टू नो टू वट दे आर एलर्जिक, टू वट दे आर एलर्जिक ऑल्सो। और एज एज यूजल जैसे हम बोलते हैं CMAs बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने आपको बोला डिस्पाइट 2015 से हम बोल रहे हैं अरे ये पोलन नहीं है, अरे ये बट स्टिल आप अभी भी देख
1: अभी
0: रहे
1: भी
0: हो,
1: देख रहे हैं।
0: लोगों को अभी भी मिसकंसेप्शन है ये पोलन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या है, जैसे फिर देर आर सम रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट्स। रेगुलेटरी में मैंने जैसे आपको बोला कि हमें फेज्ड मैनर में रिमूवल करना है फीमेल पॉपुलर्स को, तब तक सपोज 8-10 साल लगते हैं इसको फूल प्रोड्यूस करने में, तब तक हम इनको ग्रो करेंगे, उसके बाद आप इनको काट सकते
1: काट
0: हैं
1: सकते,
0: अच्छे से, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही,
0: 8-10 साल तो ये ग्रीनरी देंगे, ये तो देंगे,
1: ग्रीनरी भी देंगे, और आपको जो आपका टिम्बर की रिक्वायरमेंट है वो
0: वो
1: भी
0: भी
1: फुलफिल
0: आपको
1: हो जाएगी।
0: देंगे।
1: बिल्कुल सही
0: उसके बाद देर इज अनदर मेथड दैट इज नोन एज लूपिंग और प्रूनिंग मेथड ऑफ दिस
1: जी।
0: फीमेल ट्रीज। ये क्या होता है, ये कब करना है, ये हमें सपोज हम अप्रैल मई में, ये हमें करना है फेब्रुवरी मार्च में, काटनी है जिसको शाख तराशियां करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ये फ्लावर्स होते हैं ना इनको कैटकिन्स कहते हैं, ये शाखों पे होते हैं, तो जब आप उनको काटेंगे
1: जी, तो फ्लावर्स आएंगे
0: तो नहीं? फ्लावर्स आएंगे नहीं और

0: पास कोई बात नहीं, लेकिन उनको नहीं समझ आता है कि उनको तो कंटिन्यूस एक्सपोजर हो रहा है ना एलर्जन का, और एलर्जन अपना काम कर रहा है, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन हो जा रही है बॉडी में, जो उनको नहीं समझ आता है, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज. जो आज राइनाइट्स हैं वो कल को एजमा हो सकता है. मतलब आपको मेरी बात समझ आई, अगर नाक का एलर्जी है, नाक की एलर्जी फिर कल को छोटा सा जुकाम फिर कल को छाती में इन्वॉल्व होता है, तो उनको समझ नहीं आता. आप देखोगे मैक्सिमम पिछले ज़माने में बच्चों को जुकाम ऑलमोस्ट होता था, कोई किसी उस पर नज़र मारता ही नहीं, ना पेरेंट्स ही ना बच्चे, उनको लगता था ये एक आम सी बात है, ये तो कोई है ही नहीं मसला, ये तो कोई मसला है ही नहीं. क्योंकि हमारे लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होना है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एक हमारा मयार इसको कहते हैं मेरे ख्याल से, कि ये एक मयार है, वी शुड हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. हमें स्कूल से एब्सेंटिज्म नहीं होना चाहिए, हमें वर्क इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. ये चीज़ें हम कश्मीरियों को ज़्यादा ये है नहीं कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट करते, तो ये करते जा रहे हैं, यहाँ से इन्फ्लेमेशन होती जा रही है. फ़र्क है, यही फ़र्क है, फर्क है. अगर आज उससे खाया दवाई तो फर्क हो गई, लेकिन जब दूसरे साल होगा यही
1: तो ये दवाई शायद उसको, हाँ, और ये शायद दवाई असर नहीं करेगी.
0: फिर क्या होता है, ये और प्रोग्रेस होती है फर्क, मगर और ज्यादा. अब इसको स्टीराइड खाने पड़ते हैं, फिर इसको चीज खानी पड़ती, फिर दूसरी बार इम्यूनिटी अगर ठीक हो गई माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिया तो चलेगा, मगर अगर इम्यूनिटी ठीक नहीं हो गई, अदर कोमॉर्बिडिटीज हुई तो ही विल प्रोड्यूस विद द सिम्टम्स. सो बेटर है टू गो ए प्रॉपर फिजिशियन एलर्जिस्ट who will do the proper testing and who will tell him कि आपको किस एलर्जन से एलर्जी है. और ऐसी बात नहीं है कि आपको एलर्जी है तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है. देयर इज डेफिनेटली अ ट्रीटमेंट विच इज़ नोन एज एविडेंस बेस्ड एलर्जन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी. लाइक मैं आपको लोगों को समझाने के लिए, ये इम्यूनोथेरेपी जब उनको बोलते हैं थेरेपी, वो डरते हैं,
1: डर जाते हैं,
0: उनको लगता है ये मत कोई खुदा ना खासा वो कैंसर की थेरेपी है. ये होता है, सपोज हमारे यहाँ 80-90% पेशेंट्स को हाउस डस्ट माइट एलर्जी होती है. वो कीड़ा होता है जो आंखों से नहीं दिखता है, जो गर्दे में होता है, गर्दे में ज़्यादा हमारे बिस्तर में होता है. आपको तो पता है इंसान 1/3 ऑफ द लाइफ गुजारता है अपने बिस्तर पे, तो हमारे पिलोज में होता है, हमें मैट्रेसेस में होता है. तो जब हमें पता चलता है कि ये तो हाउस डस्ट माइट से, आप कितना भी कोशिश करो उसको अवॉइड करने की आप नहीं करा सकते, तो हम इनको यही इम्यूनोथेरेपी देते हैं. हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट ऑफ डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं या हाइपोसेंसिटाइजेशन. जिसको ये, जिस डस्ट माइट को ये हाइपर एलर्जिक थे, हाइपर रिस्पॉन्स थे, उसको हम डिसेंसिटाइज करते हैं, मतलब उसको टॉलरेंस डेवलप करते हैं. आहिस्ता आहिस्ता हम स्मॉल स्मॉल डोजेस में इनको देते हैं. ये इम्यूनोथेरेपी दो टाइप्स की होती है, स्किट होती है, सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी जो इंजेक्शन की तौर से होती है, और स्लिट होती है सबलिंगुअल जो टंग के नीचे जो इधर ड्रॉप्स होते हैं या टैबलेट्स होती है अंदर रखनी होती है. ये 3-5 साल तक करनी होती है. तो इससे क्या होता है, इससे डिसेंसिटाइज या टॉलरेंस होती है. उसका मतलब ये हुआ जब पेशेंट एक्सपोज हो जाएगा ना आप इस डस्ट माइट को, इसको सिम्टम्स नहीं आएंगे. दिस इज़ द वे, दिस इज़ द ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं है, ये चीज़ें पहले होती नहीं थी, तो अब ये चीज़ें हैं. आई एम गिविंग इट, मैंने अब तक कम अज़ कम मेरे 5,000-7,000 पेशेंट होंगे जो इम्यूनोथेरेपी पे है, एंड वी हैव डन मोर देन 10,000 एलर्जी स्पेसिफिक, ये ना स्किन प्रिक टेस्ट वगैरह हमने देखा है, बोथ फूड एंड एरो हमने किया है. एरो मीन्स वो एलर्जन जो हवा में है, हवा में डस्ट माइट भी है, हवा में ग्रासेस भी है, हवा में ट्री पोलन्स भी है, फंगस भी है. आजकल तो आपको पता है लोगों को अब पेट्स का रुझान हो गया, तो कैट एलर्जन जो इतना बड़ा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एलर्जन है, तो डॉग भी है, डॉग डेंडर है, पेट है, हॉर्स है, तो ये सारे एलर्जन इसमें होती हैं. और मेरे पास तो 2-4 लोग ये भी आए हैं बेचारे जिनको एनाफिलैक्सिस हो गया है बिकॉज ऑफ बी स्टिंग, तो हम वो भी करते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा बी स्टिंग से कभी किसी पेशेंट को एलर्जी नहीं, कभी वो एनाफिलैक्सिस होता है. एनाफिलैक्सिस मतलब होता है जानलेवा साबित होता, मतलब उनका बीपी ड्रॉप होता है, उनको फ्लशिंग होती है, उनको सांस बंद हो जाती है ऐसी, तो उसके लिए भी इम्यूनोथेरेपी है बी स्टिंग.
1: डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि एलर्जी के बाद ये जो आपने कहा कि हम थेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी किसको दी जा सकती है, कब दी जा सकती है और कैसे दी जा सकती है, इस पर बात करेंगे. लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक और ट्रैक के लिए, एक प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए, ये रहा.

0: समय में आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम शुभ में बने हुए हमारे मेहमान आज के हमारे साथ, जी हाँ, डॉक्टर रूही रसूल, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट इम्यूनोलॉजी स्किम्स सौरा, उनसे बातचीत जारी है। मैंने इस नगमे से पहले सवाल छेड़ा था कि किन को इम्यून थेरेपी दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, लेकिन उससे पहले एक सवाल रह गया कि ये जो पॉपुलर्स की हम बात कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, वो आपने थोड़ा सा बयान करना है।
1: एक्चुअली मैंने आपको बोला ये इंपोर्ट किया गया ये रशियन पॉपुलर, बिकॉज इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, ये विद इन हार्वेस्टिंग पीरियड विद इन 8 to 10 years होता है एज कम्पेयर टू द नेटल पॉपुलर जिसको 40 साल लगते हैं, बट मोस्टली ये एज ए फॉर ए टिम्बर यूज होता है और फॉर वुड जो इसका है वो एज अ फ्यूल भी यूज होता है और पैकेजिंग मटेरियल लाइक मैंने आपको बोला वो
0: फ्रूट के
1: बिकॉज हमारे यहाँ तो फ्रूट का बिजनेस है, तो फ्रूट के जो वो क्रेट्स होते हैं बॉक्सेस वगैरह उसके लिए होता है, जिसके लिए बेसिकली ये उस वक्त लाया गया बिकॉज दे यूज टू कट द किकर एंड अदर इंपॉर्टेंट
0: जो
1: बहुत महंगी होती थी, कट दैट, तो इसके लिए रीजन इसको लाया गया और मैचेस मैच बॉक्सेस मैचेस बनाना मैच स्टिक्स के लिए बनाया जाता और प्लाईवुड आपको तो पता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए उसके लिए होता है, पेपर बनाने के लिए लगता है, लाइव स्टॉक फॉडर मतलब जो जानवरों के लाइव स्टॉक जो उनके लिए फॉडर जो होता है उसके लिए बनता है और शेल्टर बेल्ट आप बोलोगे क्यों शेल्टर बेल्ट इन द सेंस जब विंड्स होते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे गांव वाले जब उनका क्रॉप होता है वो साइड्स पे पेड़ लगाते हैं, उससे क्या होता है जो हवा जो तेज हवा आती है
0: वो बचा लेता है क्रॉप को।
1: ये ट्रीज किस लिए है, अल्लाह ताला ने ये ट्रीज इसीलिए रखी है, निजाम ये अल्लाह ताला का निजाम है कि बड़ी ट्रीज जो हैवी विंड्स होती है
0: उनको रोक लेती है ताकि छोटी बचे रहे, बिल्कुल
1: दिस इज व्हाट इज, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको तो पता है सॉइल इरोजन में भी
0: बहुत इंपॉर्टेंट रोल है,
1: वो तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है रोल, रिफॉरेस्टेशन रोल जो हम यहाँ रिफॉरेस्टेशन रोल। अब आप बोलोगे ये बेचारा जो फ्लफ है जिसको हम इतनी बेचारे को ये कर रहे हैं इसके भी यूजेस है, वो दूसरी बात है हम इसको यूज नहीं करते हैं, हमें पता नहीं है क्या है और हमारी अभी इतनी ग्रोथ है ही नहीं कि हम समझे इसको कलेक्ट करें फिर यूज करें ताकि हम प्रॉपरली इसको इसके है ये दिखाया गया है स्मार्ट शू एप्लीकेशन जो है ये उसमें यूज होता है ये जो कॉटन फ्लफ है ये दिखाया गया है जो वेरेबल स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है ये उसमें एज ए कैपेसिटेटर यूज करता है ये कॉटन फ्लफ। वंस आई केम टू नो दिस थिंग आई वाज नॉट माय सेल्फ नोइंग अबाउट दिस थिंग, आई वेंट थ्रू द लिटरेचर कि ये कॉटन फ्लफ का क्या क्या यूज होता है, हम कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, तो ताकि अगर हम सुबह SMC वाले जाएं उसको कलेक्ट करके रखें प्रॉपरली तो हमें ये यूज हो सकता है और इसको वोवन यार्न प्रोडक्शन में मतलब ऊन में ना जो
0: तो
1: धागा बना सकते हैं हम इस पे, और नॉन वोवन में है इसमें है कि ये इंसुलेशन के लिए भी काम आ सकता है, थर्मल एप्लीकेशंस में भी काम आ सकता है, ऑल ऑयल एब्जॉर्प्शन में भी काम आ सकता है।
0: वंडरफुल,
1: आप खुद देखिए
0: अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बिना मतलब के बनाई नहीं है, हर किसी का कोई मतलब।
1: मैं सोच रही हूँ इतने यूजेस हैं इसके और हम इसको मिनेस हैं प्लीज इसको खत्म करो देखो हमें क्या हो गया, देखो अगर हम प्रॉपरली इसको कलेक्ट करते
0: इसको मैनेज
1: कर रहे हैं दैट व्हाट हु हैज टू डू दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ऑल द थिंग दैट प्लीज ट्राई टू मैनेज द थिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग जो इकोलॉजिकल डिजास्टर जो है मास चॉपिंग ऑफ ट्रीज करते हैं दैट इज नॉट द थिंग। ये मैं इसको बताना चाहती हूँ कि टिम्बर बहुत बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे।
0: बहुत सही। हम बात कर रहे थे इम्यूनोथेरेपी की और इम्यूनोथेरेपी पे मैंने सवाल पूछा था आपसे कि किन को इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है, किस एज ग्रुप से कहाँ तक दी जा सकती है और कब दी जा सकती है।
1: देखिए पहले मैंने बोला इंडिकेशंस इम्यूनोथेरेपी की है रैनाइटिस एलर्जिक रैनाइटिस जिनको जुकाम होता है, एलर्जिक एस्मा जिनको एस्मा होता है, एटॉपिक डर्माटाइटिस जिनको ये
0: खुजली होती है
1: और बी स्टिंग एनाफेलेक्स जिनको उनको इम्यूनोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलर्जिक राइनाइट्स में माइल्ड को जिसको कम
0: हल्की फुल्की
1: उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो परसिस्टेंट है मॉडरेट टू सीवियर है उनको हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप पहुंचेंगे हम एजमा पे ब्रोंकेल एजमा में डिफरेंट है, वहाँ माइल्ड टू मॉडरेट को देनी है सीवियर को नहीं देनी, क्यों नहीं सीवियर को देनी है। सीवियर में देखो ये मैं आपको बताऊंगी ये ब्रोंकियोल्स की डिजीज होती है स्मॉल एयरवेज और लोअर एयरवेज, तो जब सीवियर एजमा होता है तब रिमॉडलिंग होती हुई है एयरवेज की मतलब वो सुकड़ गए होते हैं इतने कि वो वापस हम उनको अपने
0: इसमें
1: नहीं ला सकते, तो इम्यूनोथेरेपी वहाँ काम नहीं करवाए। अगर फाइब्रोटिक लंग है ऑलरेडी लंग डैमेज है तो वहाँ नहीं, इसीलिए माइल्ड टू मॉडरेट ब्रोंकियल एजमा में हम
0: जहां पर इसके चांसेस

0: सिमिलरली देयर इज इम्यूनोथेरेपी विच यू कैन गिव इन फूड ऑल्सो, लाइक जिनको पीनट एनाफिलैक्सिस होती है, जिनको पीनट एलर्जी आपने देखा होगा. और जो हमारे कश्मीर में, इंडिया में फूड एलर्जी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पीनट एनाफिलैक्सिस बहुत कॉमन है. तो वहाँ इन्होंने स्टार्ट की है ओरल इम्यूनोथेरेपी, पीक उसको लीप, वो स्टडीज मैं नहीं बताऊँगी, बट वी कैन गिव फॉर पीनट, फॉर एग इम्यूनोथेरेपीज फॉर दैट ऑल्सो. एंड जैसे मैंने आपको बोला बी स्टिंग जिनको होता है, चाहे वो वास्प स्टिंग हो या हो, जिससे जो कभी जानलेवा भी हो सकती है, कभी इंसान को पता नहीं होती है तो वो जानलेवा, उसके लिए भी हम इम्यूनोथेरेपी
1: देते हैं. बहुत ही खूब डॉक्टर साहब, ये जो आपका ओपीडी होता है,
0: और ये मैंने बोला ही नहीं, ये कब तक ये देना होता है? 3 से 5 साल तक. हम मोस्टली प्रेफररी 3 साल तक देते हैं.
1: किस एज ग्रुप को?
0: वी स्टार्ट, हाँ ये भी हमें भूल गए बोला, वी स्टार्ट इट फ्रॉम 5 ईयर्स ऑफ एज. ऑल्दो वी कैन डू द टेस्टिंग फ्रॉम 3 ईयर्स ऑफ एज, बट वी आई हैव स्टार्टेड गिविंग इम्यूनोथेरेपी फ्रॉम 4 एंड 5 ईयर्स ऑफ एज. एंड इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, प्रोवाइडिंग पेशेंट डजंट हैव द सीवियर एस्मा और सीवियर प्रॉब्लम, देन वी डोंट. FEV1 होता है एक स्पायरोमेट्री में, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, अगर वो लेस देन 70% हो और अनकंट्रोल्ड एस्मा हो, उनमें हम इम्यूनोथेरेपी नहीं देते, क्योंकि हम एलर्जन इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वो इंट्रोडक्शन ऑफ एलर्जन और प्रोड्यूस करता
1: बिल्कुल सही,
0: बिकॉज वो ऑलरेडी ये होता है, दैट इज द रीजन हम उनको नहीं देते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, आपका जो ओपीडी होता है या जो आपका क्लिनिक लगता है स्किम्स में, वो कब कब होता है? जो लोग आपके इस ट्रीटमेंट से फायदा उठाना चाहे वो कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं?
0: देखिए हमारे यहाँ ओपीडी तो 2 दिन होता है, वो तो सबको पता है. मैं 2008 से ये ओपीडी चला रही हूँ. इट इज वेडनेसडेज 173 एंड सैटरडेज 176 ओपीडी होता है. तो दे कैन कम एनी टाइम. तो हम पिछले 20 साल से मैं चला रही हूँ.
1: जी उसके बाद जिनको इम्यूनोथेरेपी लगती है, हाँ,
0: तो
1: क्या?
0: हम उनको पहले डेट देते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उनको एक तो हमें यहाँ लोड बहुत है और इसमें कुछ प्रिपरेशन पहले करनी होती है ना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है पेशेंट को, उनको एंटीहिस्टामिन्स के बगैर रहना होता है, उनको बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो इसको इंटरफेयर करती है टेस्ट को, उनके बगैर रहना होता है. तो फिर उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं. तो जब हम टेस्टिंग पर देखते हैं कि वो पेशेंट को हम बताते हैं आपको इस चीज़ की टेस्ट ये है, आप देखो आप पहले अवॉइडेंस कर सकते हो, आपको देखो अवॉइडेंस से ही पहले पेशेंट को खुद ही देखता है. इससे क्या होता है, इंसान खुद देखता है कि मैं किससे एलर्जिक हूँ,
1: ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट
0: ये उससे बहुत इसको कॉन्फिडेंस होती है, यस आई एम एलर्जिक टू दिस,
1: तो
0: वो उससे बचने की कोशिश करता है. उसके बाद हम उसको बताते हैं अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, बाकी चीज़ें वैसे उतनी महंगी नहीं है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे, पिछले साल किया था एक बहुत सारे मेटा एनालिसिस हुई थी कि दे कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द इम्यूनोथेरेपी विद द कॉस्ट ऑफ द फार्माकोथेरेपी. इट वॉज शोन कॉस्ट ऑफ द फार्माकोथेरेपी वॉज मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ द इम्यूनोथेरेपी, बिकॉज इनहेलर्स आपको पता है कितने महंगे हैं, नेजल स्प्रेस कितने महंगे हैं. तो जब वो देखा, क्योंकि इससे क्या होता है इम्यूनोथेरेपी से बहुत सारे इफेक्ट, ये इफेक्ट करता है इम्यून स्टेटस ऑफ द बॉडी, मतलब द सेंस मैं बताऊंगी, सामीन को बताना चाहती हूँ, जो ये TH2 फिनोमेना होती हैं अंदर बॉडी में, ये कन्वर्ट करता है इसको फ्रॉम TH2 टू TH1 फिनोमेना, यानी ये इम्यून सिस्टम पे एक्ट करती है इम्यूनोथेरेपी, ये इसको कोशिश करता है वापस नॉर्मल बनाने की, ये जो इम्बैलेंस हुई होती है ये बैलेंस करने की कोशिश करती है इम्यूनोथेरेपी. वायरस जो फार्माकोथेरेपी होती है वो सिम्टोमेटिक होती है. फार्माकोथेरेपी मेरा मतलब है सिट्रिजिन वगैरह, हाँ, जिसको
1: बिल्कुल,
0: हम,
1: बिल्कुल.
0: जो नेजल, वो खाली हमारे सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है. मगर इम्यूनोथेरेपी से जब इम्यून सिस्टम पे स्ट्रॉ था, इम्यून हमारा उसे क्या होता है, नई सेंसिटाइजेशन नहीं होती है. नई सेंसिटाइजेशन, सपोज आपको हमने HDM की दी, हाउस डस्ट माइट की इम्यूनोथेरेपी दी, इससे क्या होगा, आपको और नई सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, और नई एलर्जी नहीं हो जाएगी, और अगर आपको और सिम्टम्स आए भी वो उस नवियत के नहीं होंगे जो आपको पहले किया था.
1: बिल्कुल,
0: प्रोग्रेशन भी खत्म होती है, नए सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, और फार्माकोथेरेपी पे भी
1: आपको जाना नहीं पड़ता,
0: जाता नहीं होता.
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज आपके यहाँ आने के लिए. हालांकि बहुत सारे सवाल अभी भी जहन में है, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी की वजह से आज और कुछ पूछ नहीं पाऊंगा. आगे मौका मिला तो आपको फिर से दावत देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और इस बारे में बात करने की. आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.
1: तो सामिन, ये थी डॉक्टर रूही रसूल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इम्यूनोलॉजी स्किम्स सोरा, जिनसे आज हमने बात की और जाना कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं एलर्जीज को लेकर. उम्मीद करते हैं आज की गुफ्तगू आपने पसंद फरमाई होगी. आज के शुमारे में बस इतना ही. इसी के साथ आज का ये हमारा प्याम सुबह का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है. अब मुझे इजाजत दें, इसके बाद आप बने रहेंगे सुहीला के साथ. लेकिन यहां इजाजत लेने से पहले आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा प्ले करने जा रहा हूं. आप नगमा सुनते रहें, नगमे के उस पार जो आवाज आएगी वो होगी सुहीला की. हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़ नासिर.

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वी 268.6 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा अगला ऐलान सुनिए।

ईशा आकाशवाणी श्रीनगर कह बजित 30 मिनट सबद वली समयन सोफियान मौसकी बुजू सदाकार वस्ताद गुलाम मोहम्मद कलीन बाप तिंद सी यम नश बुजो मकामे दुगा

0: Самый мудрым тусу Суфьян Москибузан, Садакарыс, Устад Гулам Ахмад Карим Бахты Инсахты, Иманиш Бузутай Макаме Дука. ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक है।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा

0: उद्योग प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
3: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of the summit. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
2: Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at this moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. In the article, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. They emphasized that at the same time, the need to reform global governance institutions to reflect contemporary realities has become impossible to ignore. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back.

सो मैंने आपको बताते चले फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए उदित नारायण को सुनते हैं, यह फिल्म राजा हिंदुस्तानी।

0: आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे। आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम वे 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले और दो के फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आरिफ हुसैन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में मुनशियात मुखालिफ पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पदयात्रा में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुनशियात के कारोबार और इसके इस्तेमाल से पाक बनाने के लिए मुनासिब कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पिछले 38 दिनों के दौरान 766 FIR दर्ज किए गए हैं, जबकि 856 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मुद्दत में पुलिस ने 677 किलोग्राम नशीली अशिया भी जब्त की है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजामिया के अहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी है। सरकार ने मुनशियात के स्मगलरों की सरगर्मियों को बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कारबंद रहने का तहैया किया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांडीपोरा के बाहमी इश्तराक से कल साइकेट्री कन्वेंशन ऑन डी एडिक्शन के मौजू पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में MLA बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट के अलावा डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल चिब ने भी शिरकत की। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने कल एक मीटिंग के दौरान राजौरी जिले के मेंढर में अमलाई जा रही तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर जिले की यकसा और मुतवाजिन तरक्की के लिए वादाबंद है। जल जीवन मिशन पर बनी कानून साज असम्बली की हाउस कमेटी की मीटिंग कल MLA पम्पोर हसनैन मसूदी की सदारत में श्रीनगर में मुनअकद हुई। मीटिंग के दौरान कमेटी ने मुख्तलिफ अजला में जेर तामीर जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कामों का तफसीली जायजा लिया। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने कल जिले में जल जीवन मिशन के तहत जारी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर हिदायत दी कि तमाम जेर तामीर कामों को अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि आम लोगों को इनसे फ़ायदा पहुँच सके। उमूरी नौजवान और खेलकूद के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने उज़्बेकिस्तान में मुनक़िद हुई Under-15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद दी है। सेक्रेटरी मौसूफ ने राजौरी से ताल्लुक रखने वाले 14 साल मोहम्मद यासिर की कल एक तकरीब पर इज्जत अफजाई की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यासिर ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने कल इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग में

0: سوتان دی تو اجازت بی تو خدا سوال. السلام علیکم.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: بس ایک بار، صرف ایک بار، اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا. سیف ہے یار، لیکن رگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا، دھیرے دھیرے صحت، دوستی، سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے. کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں، بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے، اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے.
3: پر کیا کر سکتے ہیں،
2: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشا مکت جموں کشمیر ابھیان. بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو. یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے، سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے.
4: آؤ چلیں اور ایک نیا راستہ چلیں، زندگی کی اصلی پہچان بچائیں اور بنائیں نشا مکت جموں اینڈ کشمیر. سے نو ٹو ڈرگز، یس ٹو لائف. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
5: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा. और ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
6: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा. 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था. इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं. प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे. संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे.
5: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे. श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा. हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं.
7: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है. शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं. भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं. आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया.
5: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की. सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है. श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं. श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की. छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं. रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को

0: सबदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे

0: वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए, तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है।
0: जी, एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है।
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी,
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
0: जी,
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
0: जी, यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह

0: पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
4: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं, बार भी नहीं लगी। अरे,
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे
5: मैं, तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
7: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
8: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
8: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के

0: तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए,
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं?
2: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हाँ, सब तैयार हैं।
5: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान,
4: जिंदा रहने के आधार।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली।

0: शर्मानी चाहिए तुझे।
1: दोनों आगे बढ़ो।
2: अरे कहाँ से
1: दो मिनट की बात हमें बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शिव
2: काटो पे। पैरों से छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
3: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हाँ, हम चिपक जाएंगे।
1: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
6: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
1: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो। चलो
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
6: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
6: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
0: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
5: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी द्वारा तैयार करदा स्पॉन्सर तालीमी प्रोग्राम उमंग। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा। खबरों का जरा सा इंतजार।

के दरमियान तालुकात में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पहले की इन हिदायत को वापस लेने से इनकार कर दिया है कि अवामी जगहों से उठाए गए आवारा कुत्तों को टीका लगाए जाने या उनकी नसबंदी किए जाने के बाद वापस न छोड़ा जाए। जस्टिस विक्रमनाथ की क्यादत में एक बेंच ने उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जिनमें नवंबर 2025 के हुक्म में तरमीम करने और हुक्काम को यह हिदायत देने के लिए कहा गया था कि वो इन कुत्तों को शेल्टर्स में महदूद कर दें। अदालत ने बच्चों, मुअम्मर अफराद और मुसाफिरों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात को गहरे तौर पर परेशान कुन बताया और कहा कि ये लानत हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत अहम अवामी जगहों तक पहुंच गई है। बेंच ने खबरदार किया है कि जो अफसरान इन हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहेंगे उन्हें तौहीन अदालत और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह

0: जिनमें नवंबर 2025 के हुक्म में तरमीम करने और हुक्काम को यह हिदायत देने के लिए कहा गया था कि वो इन कुत्तों को शेल्टर्स में महदूद कर दें। अदालत ने बच्चों, मुअम्मर अफराद और मुसाफिरों पर कुत्तों के हमलों के वाकयात को गहरे तौर पर परेशान कुन बताया और कहा कि ये लानत हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत अहम अवामी जगहों तक पहुंच गई है। बेंच ने खबरदार किया है कि जो अफसरान इन हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहेंगे उन्हें तौहीन अदालत और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के सदर तोलाम से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इरादा किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि इश्तराक दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफा शुदा जामع स्ट्रेटेजिक साझेदारी का अहम सतून है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम बाहमी एतमाद, मुश्तरक इकदार और दिफा, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में करीबी इश्तराक के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की एक आला सतह की एक मीटिंग छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के मकाम पर शुरू हो गई है। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के वज़रा आला सेंट्रल जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। एक हफ्ते से भी कम अरसे में यह दूसरी बार इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये फी लीटर, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.70 रुपये और डीजल की कीमत 96.07 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की कीमत 96.11 रुपये फी लीटर हो गई है। भारतीय रेलवे ने चेन्नई के नवाही रेल नेटवर्क को उसा देने के लिए अर्ककोनम चेंगल पट्टू लाइन को दोहरा करने के प्रोजेक्ट के लिए 993 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि 68 किलोमीटर तवील रेल लाइन अहम चेन्नई नवाही सर्कुलर रेल नेटवर्क का हिस्सा है जो चेन्नई के साहिल को ताम्बरम, चेंगल पट्टू और अर्ककोनम से मिलाता है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने कौमी राजधानी में अगले 3 रोज तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कौमी राजधानी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री के दरमियान रहा जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। कल रिज इलाके में वाके IMD स्टेशन में दर्जा हरारत 44.6 डिग्री सेल्सियस जबकि सफदरजंग स्टेशन में 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड स्टेशन में 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
0: मिजोरम में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी SIR का काम शुरू हो गया है। SIR से मुतल्लिक एक रोजा तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मिजोरम के आला इंतखाबी अफसर डॉक्टर लाल ओजामा ने आम लोगों और इंतखाबी कमीशन की उम्मीदों को पूरा करने की गरज से इज्तमाही कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा जबकि लीग मैच अपने आखिरी मरहले में है। प्लेऑफ के लिए सिर्फ 5 टीमें हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुकी हैं। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी फाइनल के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिले तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गेहर स्टोर, डेनमार्क के वजीर आजम मेते फ्रीदे रिक्सन, फिनलैंड के वजीर आजम, आइसलैंड के वजीर आजम और स्वीडन के वजीर आजम भी होंगे। وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی

फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए तेजाब फिल्म से नगमा सुनते हैं। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और साथियों की।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

फौजी भाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिल्म दाग के इस नगमे से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिर के बोल है और लक्ष्मीकांत पैरेलाल की मौसिकी।

जी दोस्तों, आपको बताते चले फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में। अब आइए लता मंगेशकर को सुनते हैं, यह फिल्म जानी दुश्मन। गीतकार वर्मा मलिक और मौसीकार लक्ष्मीकांत पहरलाल।

जी दोस्तों, अब आइए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी में आनंद बख्शी का लिखा नगमा सुनते हैं। यह है फिल्म बचपन, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर पे अब आइए हेमलता को सुनते हैं। यह फिल्म आँखियों के झरोखों से।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सईद मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ओस्लो नॉर्वे में तीसरे इंडिया नॉर्डिक इजलास में कर रहे हैं शिरकत। मंशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत वाली पद यात्राओं का सिलसिला जारी। अभियान के तहत 3,93,000 बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की मर्दमशुमारी 2027 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की आवाम से अपील। और वज़ीर-ए-आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। अब पेश हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ओस्लो नॉर्वे में तीसरे इंडिया नॉर्डिक इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का बुनियादी मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, तिजारत और दीगर शोबों में नॉर्डिक ममालिक के साथ अहम शराकत दारी को बढ़ावा देना है। वजारत खारजा के मुताबिक इस इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के वज़राए आज़म भी शिरकत करेंगे। इजलास के हाशिए में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दोतरफा मीटिंग का इनेकाद किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज के सभी तबकों से अपील की है कि वो मंशियात का कलाकमा करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करके मंशियात के पूरे नेटवर्क को नेस्त नाबूद करें ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सके। आज पुलवामा में नशा मुक्त अभियान के तहत मुनक्द एक बड़ी पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले एक माह के दौरान लोग मंशियात के खिलाफ मुनज्जम हो गए और उन्होंने मंशियात के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अब तक यूटी में 3,93,000 बेदारी प्रोग्राम मुनक्द किए गए, 897 ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया जबकि 49 जायदादों को जब्त किया गया। वाज़ह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत 11 अप्रैल को जम्मू से की थी। जब से लेकर पुलिस, इंतजामिया और दीगर महकमों ने मंशियात के नेटवर्क को ख़त्म करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल की। एलजी ने इस धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया देते हुए कहा कि एक तरफ ड्रग स्मगलरों को ख़त्म करने के लिए मुनज्जम कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबतकारी के लिए भी लाजमी इकदाम किए जाएंगे।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से बचाने के लिए दरकार इकदाम के ताल्लुक से वादी के एक फिल्म मेकर गुल रियाज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: वालदेन का बहुत अहम रोल होता है जब बात बच्चों को ड्रग्स से बचाने की हो। सबसे पहले अपने बच्चों से खुले दिल से बात करें, उनकी प्रॉब्लम सुने और उन्हें जज ना करें। ड्रग्स के नुकसान आसान लफ्जों में समझाएं, डराने के बजाय हकीकत बयान करें। बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें और अच्छी कंपनी की इम्पोर्टेंस समझाएं। घर का माहौल पॉजिटिव रखें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनकी हॉबीज को सपोर्ट करें। अगर बच्चे के बिहेवियर में अचानक चेंज आए, गुस्सा, तन्हाई या स्टडी से दूर हो तो इग्नोर ना करें। रूल्स और बाउंड्रीज क्लियर हो लेकिन ट्रस्ट के साथ, और अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने से ना हिचकिचाएं। याद रखें, प्यार, समझ और सपोर्ट के साथ ही हम अपने बच्चों को ड्रग से बचा सकते हैं।
0: नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आवाम से ताकीद की है कि वो मर्दमशुमारी 2027 के सिलसिले में सेल्फ इनुमरेशन का अमल मुकम्मल करें। ये बात उन्होंने कल सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में अपना सेल्फ इनुमरेशन कराने के दौरान कही। काबीना वज़रा सकीना आयतू, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा के अलावा कई मेम्बरान असम्बली ने भी अपना सेल्फ इनुमरेशन मुकम्मल किया है। वज़ीर-ए-आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत अमलाए जा रहे कलीदी नवियत के तरकीबी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि वो तमाम प्रोजेक्टों को सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने से पहले मुकम्मल करें। बाद में उन्होंने कई प्रोजेक्टों का दौरा करके काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। दरियासना नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा, ईद उल अदा और मौसमी गर्मा के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इस साल अगस्त में किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके में मुनक्द होने वाले

0: AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 93 लाख रुपये मालियत की अराजी के एक फ्रॉड मामले में सैमसन बड़गाम में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। एक प्रेस बयान में क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने आम लोगों को सलाह दी है कि वो इस तरह के फ्रॉड करने वालों से खबरदार रहे और इस तरह के किसी भी मामले को क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के SSP अब्दुल वहीद शाह की नोटिस में लाए। जम्मू कश्मीर बैंक UT के मुख्तलिफ सेक्शन को फ़रोग देने नीज लोगों को आला मैयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है और इस बैंक को जम्मू व कश्मीर के इक्तिसादी ढांचे में एक कलीदी अहमियत हासिल है और बैंक हर गुजरते दिन के साथ तरक्की की नई मंजिलों को छू रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना। तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को, और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं और जो इंटरेस्ट देते हैं, उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है। इन सबको जब हम उस इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है जिसपे हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम डिक्लेयर करते हैं। जो 2,363 करोड़ का प्रॉफिट बताया इस साल का, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बेसिकली यही है बैंकिंग बिजनेस।
0: जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में सियासी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मजीद इकदाम करने का मुतालबा उनके सामने रखा। GM शाही ने इस मौके पर कहा कि सियासी सेक्टर को दोबारा अपनी पटरी पर लाने के लिए एतमाद पर मबनी मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है। BJP जम्मू कश्मीर के स्टेट तर्जुमान इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि यह दहशत पसंदी और इसके ढांचे को ख़त्म करने के लिए एक कौमी मिशन के तौर पर जारी रहेगा। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक न तमाम दहशत पसंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। एक हफ्ते से भी कम अरसे में ये दूसरी बार इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 64 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत 91 रुपये 58 पैसे हो गई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जबकि लीग मैच अपने आखिरी मरहले में है। प्लेऑफ के लिए सिर्फ 5 टीमें हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुकी है। उमूरी नौजवान और खेलकूद के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने उज़्बेकिस्तान में मुनक़िद हुई U15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद दी है। सेक्रेटरी मौसूफ ने राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साल मोहम्मद यासिर की कल एक तकरीब पर इज्जत अफजाई की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यासिर ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद अहमद ने कल ज़िले में जल जीवन मिशन के तहत जारी मुख्तलिफ कामों का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर हिदायत दी कि तमाम ज़ेर तामीर कामों को अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि आम लोगों को इनसे फ़ायदा पहुँच सके। जल जीवन मिशन पर मनी कानून साज असम्बली की हाउस कमेटी की मीटिंग कल MLA पामपुर हसनैन मसूदी की सदारत में श्रीनगर में मुनक्कद हुई। मीटिंग के दौरान कमेटी ने मुख्तलिफ अजला में ज़ेर तामीर जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कामों का तफसीली जायजा लिया। जंगलात व माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने कल एक मीटिंग के दौरान राजौरी ज़िले के मेंढर में अमलाई जा रही तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर ज़िले की यकसां और मुतवाजन तरक्की के लिए वादाबंद है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन सुपर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सुपर के 4 बज चुके हैं। एक वक्फे के बाद पेश आज का पहाड़ी प्रोग्राम।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते

हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तू अज दा पाड़ी प्रोग्राम किनका मैं हाँ तुसी मेज़बान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारियां को प्रोग्राम भी जी आया को आखतियां अर कदे आओ ते प्रोग्राम दी शान बताओ सामीन अस्ते कार दा खजाना अस्ते निके बच्चे हैं और कार दी रौनक अस्ते बड़े बुजुर्ग असा को चाहिदा कि इना नियमतां दा असी खास ख्याल रखा और अस्ते बच्चे अजकल ऐसा दौर आ कि अस्ते बच्चे जड़े हैं ओ ऐसी तेज रफ्तार जिंदगी बिच टूर रहे हैं जिस बिच किसी भी वेले अस्ते बच्चे जड़े हैं किसी भी गलत आदत का शिकार बन सकते हैं सामीन अस्ते बच्चों के आस पास ऐसे कई सारे लोग हो सन जेड़े चाहते हो सन कि वह अस्ते बच्चे का जड़ा सही पाथ है जड़ा सही रस्ता है उस तो अस्ते बच्चे को इधर उधर करन लिहाजा असं को चाहिदा कि असी अपने निक्या बच्चों नाल काफी चंगा रवैया जड़ाया इख्तियार करा खास तौर जड़े अस्ते बच्चे जड़े हैं 8 सालां 9 सालां तो उपर जड़े बच्चे हैं इना बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिते दी जरूरत आ 8-9 साल तो उपर जितने भी बच्चे अस्ते हैं ए बच्चे ऐसे नाजुक फुल हैं जिन्हां को कोई भी किसी भी तरीके नाल वर्गला सकता और कोई भी गंदी आदत इना बिच बा सकता लिहाजा असां को चाहिदा कि असी अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल घर दे अंदर देवा ताकि अस्ता बच्चा कोई भी चीज़ जड़ी आ असा नाल आका बेझिझक आखा।

0: वास्ते जेब्रा क्रॉसिंग और ओवरहेड ब्रिजस तामीर किए गए हैं। सामीन अकवामे मुतहदा दी रिपोर्ट के मुताबिक अगर असी सिर्फ अपने रिहायशी इलाकों स्कूलों ते बाजारों के कोल गड्डी दी रफ्तार को कम रख सां ते सड़कों ते होने वाले हादसों और जानी नुकसानों विच 50% तोड़ी कमी की जा सकती है। तो सामीन कवानीन अपनी जाई हुकूमत दे अकदाम अपनी जाई जिचर तोड़ी असी खुद एक जिम्मेदार शहरी न बन सां सड़कां महफूज न हो सन। सामीन सड़कां ते सिर्फ तुसी कले ना होंदे बल्कि इन्हां सड़कां ते किसी दा बुढ़ापे पैदल टुरदा आउंदा है, किसी दा बच्चा स्कूल थी घर जुलदा आउंदा है, कोई मेहनत मजदूरी करके घर वापस मुड़दा आउंदा है, उन्हां सारयां दा कोई ना कोई इंतज़ार करदा है और तुसदा भी। सामीन आओ रेडियो दे तवासत नाल इस मई दे दुए हफ्ते विच असी मिल के ये अहद करां कि गड्डी चलेंदियां कदे भी मोबाइल फोन दा इस्तेमाल न कर सां, बाइक चलने वक्त हेलमेट ते गड्डी चलने वक्त सीट बेल्ट जरूरी इस्तेमाल कर सां और इस सब थी बढ़ के थीम 2026 दे मुताबिक अपनी गड्डी दी रफ्तार को हमेशा काबू विच रख सां। याद रखो जे महफूज रफ्तार महफूज जिंदगी, कियां जे एहतियात इलाज थी बेहतर है और जिंदगी दोबारा नहीं मिलती।
1: असी दिखते हैं कि अस्ते बच्चे जड़े हैं वह घरों स्कूल निकलते हैं, खास तौर वह बच्चे जड़े गड्डिया विच नहीं गेंदे, स्कूल बसेस विच नहीं गेंदे, जड़े आप गेंदे हैं। असां को चाहिदा कि असी स्कूल दे अंदर गच का एक बारी चेक करके आवां कि वाकई अस्ता बच्चा जड़ा है स्कूल तू कार तू निकल का स्कूल ही जा रहा या स्कूल रेगुलरली इसकी अटेंडेंस पूरी है और ये बच्चा स्कूल तू डायरेक्टली घर ही आ रहा, ट्यूशन अगर जा रहा बच्चा तो ट्यूशन रेगुलरली जा रहा। ये सारिया चीज़ा दिखे दियाँ सारिया चीज़ा चेक किते दी काफ़ी ज़्यादा लोड़ आ, क्योंकि इसे नाल असां को पता चल सी कि इसका बच्चा कुथा उठता कुथा बिजदा, किना नाल उठता किना नाल बिजदा, केड़ी कंपनी आस्ते बच्चे दी। अजकल दा जड़ा दौर आ ये काफ़ी तेज़ दौर आ और इस बिच काफ़ी सारी चीज़ा जड़ियाँ हैं इसते बच्चे दे आस पास रहनियाँ। असां को चाहिदा कि असी इना चीज़ा को काफ़ी माइन्यूटली दिखा और अपने बच्चे दा खास ख्याल रखा। सामीन असी अगर अपने बच्चे को पैसा भी दे रहे असी पूरा दिखा नज़र रखा कि इसका बच्चा जड़ा है इस पैसे दा के कर रहा, ये किसे सही जगह ला रहा कि नहीं ला रहा। तो सामीन आओ प्रोग्राम दे आखिर भी सुनते हैं अनायतुल्ला खान।

0: उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर विच नौजवानों को इस लातू बचाने वास्ते मुसारे कदमों के बारे में वादी के एक फिल्म मेकर गुल रियाज सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करते हुए आख्या,
2: वालदेन का बहुत अहम रोल होता है जब बात बच्चों को ड्रग्स से बचाने की हो। सबसे पहले अपने बच्चों से खुले दिल से बात करें, उनकी प्रॉब्लम सुने और उन्हें जज ना करें। ड्रग्स के नुकसान आसान लफ्जों में समझाएं, डराने के बजाय हकीकत बयान करें। बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें और अच्छी कंपनी की इंपॉर्टेंस समझाएं। घर का माहौल पॉजिटिव रखें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनकी हॉबीज को सपोर्ट करें। अगर बच्चे के बिहेवियर में अचानक चेंज आए, गुस्सा, तन्हाई या स्टडी से दूर हो तो इग्नोर ना करें। रूल्स और बाउंड्रीज क्लियर हो लेकिन ट्रस्ट के साथ, और अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने से ना हिचकिचाएं। याद रखें, प्यार, समझ और सपोर्ट के साथ ही हम अपने बच्चों को ड्रग्स से बचा सकते हैं।
1: नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी सुन आवाम को ताकीद की है कि मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में सैल्फ इन्यूमरेशन का अमल पूरा करन। ये गल उन्होंने सुन कल सिविल सैक्रटेट श्रीनगर में अपना सैल्फ इन्यूमरेशन कराने के दौरान की। काबीना वजरा सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा तो इलावा कुछ मैंबरान ने असैम्बली सुन भी अपना सैल्फ इन्यूमरेशन पूरा किया। एक खबर तुसी आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हो। खबर तुसी आकाशवाणी दी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH ते भी सुन सकते हो। वजीर आला दे मशीर नासिर असलम वानी सुन अज जम्मू बिच जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड दे तहत अमलाए जुल रहे जरूरी नौइयत दे तरक्याती प्रोजेक्टां दी पेशरफ्त दा जायजा किया। इस वेले ते उन्होंने सुन हिदायत दी है कि उस सारे प्रोजेक्टां को सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने तो पहला पूरा करन। बाद विच उन्होंने सुन कुछ प्रोजेक्टां दा दौरा करके काम दी पेशरफ्त दा जायजा किया। इसी दौरान नासिर असलम वानी सुन आज जम्मू बिच एक मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा ईद उल अजहा और बरे दे मौसम के सिलसिले बिच मुझ सारे महकमा दी तरफों कीतियां जुल रही तैयारियां दा भी जायजा किया। चीफ सैक्रटरी अटल डुल्लु सुन अज श्रीनगर बिच एक मीटिंग के दौरान इस साल अगस्त बिच किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों बिच मुनक्द होने वाली सालाना माचील माता यात्रा के सिलसिले बिच किए जुल रहे इंतजामों का जायजा किया। उन्होंने सुनमुच सारे मुल्कों को हिदायत दी है कि वह यात्रा के सोहने तरीके इनकाद वास्ते सारे इंतजामों को पूरा करन और श्रद्धालुओं को हर तरीके दहूलत देवन। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जेएम शाहीन सुन लेफ्टिनेंट गोनन मनोज सिन्हा दे नाल मुलाकात की और जम्मू कश्मीर बिच सियाहती सैक्टर को बाधा देने वास्ते मजीद कदम चाणे दे बारे बिच उन्हां नाल गल की। जेएम शाहीन सुन इस मौके ते आखे कि सियाहती सैक्टर को फिर अपनी पटरी ताड़ने वास्ते एतमाद ते मबदी मजीद कदम चाणे की जरूरत है। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी दे मुझ सारे सैक्टरों को अगल ले जाने नेज लोगों को बड़ी मियार दी बैंक सहूलत देने वास्ते हर मुमकिन कदम चाह रही है और इस बैंक को जम्मू कश्मीर दे इक्तसादी ढांचे बिच एक बड़ी अहमियत हासिल है और बैंक हर नवे ध्याड़े दे नाल नाल तरक्की कर रही है। इस बारे बिच जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटरसन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या,
3: बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना। तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को, और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं और जो इंटरेस्ट देते हैं, उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है। इन सबको जब हम उस इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है जिसपे हम टैक्स पे करते हैं को, और टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम डिक्लेयर करते हैं। जो 2363 करोड़ का प्रॉफिट बताया इस साल का, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बेसिकली यही है बैंकिंग बिजनेस।
1: IPL क्रिकेट बिच आज शाम 7:30 बजे जयपुर बिच राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट्स नाल होगा, जदों के लीग मैच अपने आखिरी मरहले बिच है। प्ले ऑफ वास्ते छड़े 5 टीमां हैं, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, गुजरात टाइटेंस, सनराइजर्स हैदराबाद पहला ही प्लेऑफ वास्ते क्वालीफाई कर रहे हैं, जदों के मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स बाहर हो गए हैं। खास खास खबर एक बारी फिर सुन के नो। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज

ओस्लो नॉर्वे बिच तीजे इंडिया नॉर्डिक इजलास बिच शिरकत करसनगे। मनशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत आली पदयात्रा का सिलसिला चल रहा है। अभियान के तहत 3,93,000 बेदारी प्रोग्रामा का इनकाद। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की मुर्दमशुमारी 2027 बिच असल तरीके नाल हिस्सा लेने की आवाम को अपील। और वजीर आला दे मशीर नासिर असलम वानी सुन जम्मू बिच स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पेशरफ्त का किदा जायजा। इस दे नाल ही पहाड़ी खबरां दा ई बुलेटिन मुक्या। अस्ते अगले खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी श्रीनगर तो शाम 5:50 तै गोजरी जबान बिच नशर होसीगा। दियो इजाजत, खुदा हाफिज़।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय आप हमें DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर रहे हैं। सपहर के 4:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए आज का पंजाबी प्रोग्राम।

0: आप आज का पंजाबी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। पेशकश समीना शाह। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 5 बज रहे हैं। एक वक्फे के बाद समाप्त कीजिए आज का गोजरी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

पहाड़ी इलाका पुंछ ते ओतावा रजौरी रियासी ते जम्मू कठुआ ते डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह मा बसण वाला गुजर बकरवाल कबाइल सियाला का 7 महीना ग्राया में गुजार गए, फिर 5 महीना शिंगरा ते बैक टोका में गुजारी। पहली बसाख ना कुकू जद बोले ते ये लोग उसना ऐलान बिहार समझे, ते फिर जिमिया में मकई राणी शुरू करी, ताइया की तैयारी शुरू करी, ते कम ते फारग होता ही माल पारू ले गए। हजारा फुट की बुलंदी पर वाकया सरसब्ज शादाब पहाड़ ते नीला सरब ते अरिया परियां जंगलों दर रुख करी।

जद बूटां का छामड़ा लम्मा आउण लग जी ते उसले महफल छामड़े जमण लग जी। बड़ा बडेरा गी महफलां मां सैफल मलूक अहवाल आखरत किस्सा सुल मोहसिनीन मोहम्मद बूटा तहीर रांझा सस्सी पुन्नू ते यूसुफ जुलेखा ते मियाँ मोहम्मद बख्श वो पंजाबी कलाम ते किस्सा और सारा सांझा होण लग जी। यो गमे रोजगार ते फरार गो बानू ही होवे ते जिक्र परवरदिगार गो वसीलो भी होवे। जरी दुराडे गबरुआ की महफल जमी वे आपस में ठट्ठा मजाक करी खेर तमाशा करी एकन दूजा ना छेड़ी आपस में बीनी पकड़ी अच्छा बुगदर चावी कबड्डी खेड़ी बांसरी ते शरनाई बजावी ते चंग ते जोड़ी का नगमा ते गीत का खूबसूरत जा सुर बखेरन लग जी। उस वे टोक माजी की दास्ताना की कोकाफ बन जी। कालसीरी अपना ही आलम में मगन होवी वे टोलियां में बैस गए कहानी सुनी ते सुनावी नाले रंग बिरंगा गीत ते बोल बोली उन गीता ना बंगा को छनकार ते कंगणा की तनक और भी दिल पजीर बनावे। ये चकोर माँ बैसी या पींग जोली नौजवाना की शोखी ते बड़ा बडेरा की संजीदगी ते लुत्फ टोक माँ जड़ो मसरत बख्श माहौल बनावे वह किसी दूजी थाई हासिल नहीं हो सकतो। खाण पीण को मामलो यो होवे जे तीस लगी ते ठंडी ठार सजरी लसी एक कटोरो पार गए पी गए मस्त मदोश हो जी ते भूख लगी ता मकई की तत्ती तत्ती ताज़ा रोटी ऊपर मक्खन को ताज़ो पेड़ो साग गल गए ते खा गए मदोश मस्त हो जी। शहरंगी बिदती खुराक तू ये लोग वाकफ ही नहीं होता। चाह सिगरेट उक्को तम्बाकू ते नस्वार को रवाज खासो होवे ये कबाइल तासुब ते हसद की आद तक मजहब का पाबंद होवे। कम काज ते तफरी तू फुर्सत लबताई मस्जिदा माँ पहुँच गया जिक्र खुदा में मशगूल हो जी। शाम होता ही वाजो तबलीग का जलसा ते मिलाद की महफल सज जाई आम तौर पर मसीद ही टोक को मेहमान खानू होवे। रात ना आजड़ियां को अग को अकीर पखे नाले उन को कुत्तो पूरी रातें शेर का खतरा न टालन वास्ते जागता रही। आग का अकीर की चमुखी टोक का जवान रात चिर चिर तोड़ी बैठा रही। माजी की दास्तान मुस्तकबिल की तमन्ना ते आरजू उनको मौजू कलाम होमी चाननी राता माँ आजड़िया ते माजिया की बंजली की मस्त मदोश परी आवाज जंगलां की तनहाइया माँ फैल गए खूब जादू जगामी ते बूटा की खमोशी ते आबशारा ते नदियां का शोर टोक ना किसी अलफ लैलाई दास्ताना को मंजर बना छोड़ी ते गुजरा को आपसी इतिहाद मिसाल के काबिल होवे। वे एक दूजा की मदद करी ते बड़ा बड़ा पारा कम आपस में रल के निभावी वर ये लोग डाढ़ा सादा मिजाज होवी ते सखावत इनकी रग रग में रची बसी भी होवे। ये किसे ना भी अपना दर्द ते भुखो त्यासो त्यासो नहीं जान देता। हर किस बर्दाश्त उन्होंने लुटेरा भी खूब लुटनी सो सो बाना बना गए। इन सादा मिजाज लोगों को मक्खन तक की गनस्तर सो बाना पार पार गए ले जी।

0: संग के आगे में प्यार शो पाया जे
1: ते कुछ वेलो मरा कोला बच्चे भी है आओ हम सुन लिया नीलम सानी कोलों पंछी।

के नाल ही गोजरी प्रोग्राम गोयलो मुकरन आवे। गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है वसीम फारूक वानी, अपना मेजबान डॉक्टर अल्ताफ निजामी ना अगली मुलाकात तुड़ी। दियो इजाजत, चला जी फिर, रब रखो।

समय आप समाप्त कर रहे थे आज का गोजरी प्रोग्राम, पेशकश वसीम फारूक। ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है, मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

समय आपको याद दहानी करें कि रात 9:30 पर प्रोग्राम नश होगा बजमिशार। प्रोग्राम में जो शौराई किराम शिरकत फरमा रहे हैं उनके अस्माई गिरामी हैं गुलाम नबी यत्तू, गुलाम हसन मीर, जावेद अहमद लोन, जरीना अज़ीज़, मोहम्मद अकरम नजार और अब्दुल खालिक वानी। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपकी फरमाइश सुनिएगा रोहित मुश्ताक के साथ शब 10 बजे। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। 5:50 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे यहां से गोजरी में खबरें नश होंगी। वाज़ह रहे कि गोजरी खबरों के फौरन बाद यानी ठीक 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन भी ब्रॉडकास्ट होता है। पहले आइए गोजरी खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।

0: नाल नाल नार्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन का वजीर आजम भी शिरकत करेंगा। इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आइसलैंड का वजीर आजम के नाल दो तरफा मीटिंग की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज का सारा तबका ते अपील की है कि वे मंशियात न खत्म करण वास्ते अपनो कलीदी रोल अदा कर गए, मंशियात का पूरा नेटवर्क ना खत्म करें ताकि नौजवान नस्ल ना इस लानत ते बचायो जा सके। आज पुलवामा में नशा मुक्त अभियान के तहत हुई एक बड़ी पदयात्रा ना चंडी दस के रवाना करण के बाद तकरीब में बोलता वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहो कि पिछला एक महीना के दौरान लोग मंशियात के खिलाफ एक हो गए हैं और उन्होंने मंशियात के खिलाफ एक हो गए आवाज चाहिए। उन्होंने कहो कि अभियान के तहत हुण तोड़ी यूटी में 3,93,000 बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया ते 897 ड्रग समगलर ना गिरफ्तार कियो जबकि 49 जायदाद ना भी जब्त कियो।
1: पुलवामा के हर घर, हर स्कूल, हर गली और हर दिल तक नशे के खिलाफ युद्ध का बिगुल खुद लोगों ने पहुंचाया। पिछले एक महीने में हमने केवल आंकड़ों में बदलाव नहीं देखा बल्कि आवाम की रूह को जागते हुए अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का काम किया है। बारामूला में जिस तरह नशे के खिलाफ लोग जुटे और आवाज बुलंद कर रहे थे उन्हें हमने और आप में से अनेक लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैंने कुपवाड़ा में हजारों नौजवानों और माँ बाप को नशे के खिलाफ दृढ़ संकल्पित होते हुए देखा। पिछले 39 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जनपदों में मैंने पड़ोसियों का सहारा बनते हुए देखा और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस चुप्पी को टूटते हुए देखा है जो वर्षों तक जम्मू कश्मीर में छाई हुई। आज वह चुप्पी नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज में तब्दील हो गई।
0: वाजिर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 100 दिन पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत 11 अप्रैल न जम्मू ते की थी ते उतु ले गए पुलिस, इंतजामिया और दूजा महकमा ने मंशियात का नेटवर्क न खत्म करण में नमाया पेशरफ्त हासिल की। एलजी ने इस तंदा में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता हुआ कहो कि एक तरफ ड्रग समगलर न खत्म करण वास्ते मुनजम कार्रवाई की जाएगी ते दूजी तरफ इस लत में फंसिया नौजवाना की बाज बादकारी वास्ते भी जरूरी कदम चाया जाएगा।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में नौजवानों ना इस लत ते बचाने वास्ते दरकार इकदाम का ताल्लुक नाल वादी का एक फिल्म मेकर गुल रियाज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता वा क्यों।
2: वालिदैन का बहुत अहम रोल होता है जब बात बच्चों को ड्रग्स से बचाने की हो। सबसे पहले अपने बच्चों से खुले दिल से बात करें, उनकी प्रॉब्लम सुने और उन्हें जज ना करें। ड्रग्स के नुकसान आसान लफ्जों में समझाएं, डराने के बजाय हकीकत बयान करें। बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें और अच्छी कंपनी की इंपॉर्टेंस समझाएं। घर का माहौल पॉजिटिव रखें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनकी हॉबीज को सपोर्ट करें। अगर बच्चे के बिहेवियर में अचानक चेंज आए, गुस्सा, तन्हाई या स्टडी से दूर हो तो इग्नोर ना करें। रूल्स और बाउंड्रीज क्लियर हो लेकिन ट्रस्ट के साथ, और अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने से ना हिचकिचाएं। याद रखें, प्यार, समझ और सपोर्ट के साथ ही हम अपने बच्चों को ड्रग से बचा सकते हैं।
0: पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई न जारी रखता हुआ आज अनंतनाग में गैर कानूनी तौर खशकाश कास्त करण आला के खिलाफ 3 मामला दर्ज किया। पुलिस ने शुपिया जिला का कई तालीमी इदारा में मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों को इनकार कियो। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सई दरखशांदराबी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मंशियात को नेटवर्क 1989 ते दहशत पसंदी के नाल नाल काम कर रहे हो और समाज में इसकी जड़ काफ़ी मजबूत हैं। आज बड़गाम में असलुक आलो नामी प्रोग्राम में बोलता में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया नशा मुक्त अभियान ने होण तोड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद और ज्यारतगाह में भी मौलवियों ते जानन आला ने इस बिदत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके करनी चाहिए। इस मौका पर मीडिया के नाल गल करता वा उन्होंने यह गल कही ते तकरीब में बोलता वा बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने सकाफती रवायत और इखलाकियात ना तहफुज दे गए नौजवाना ना इसका वारा में और ज्यादा जरूरत पर जोर दितो। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर।

0: के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: इस आकाशवाणी हूं श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 77.8 मीटर तथा एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज बिट समय मोहतरम शबजित 5 मिनट सपित अके वक्फ पद पेश گرامی بائن ہندی خطر سون ازیک پروگرام
4: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: सुनो ना, हा? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हा?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 9018074333।
4: 9018074333।
5: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने शरीर विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
6: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
5: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
6: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मेगदारस में त्राव नहीं हुआ। विटामिन ए छो साइन इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मेगदारस में।
5: मगर ये है सठा द्रोग।
6: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशुक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
7: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद, प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब। फोर्टिफाइड वसाइलन हिज जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप।
8: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
8: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
11: शर्मिन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को शुरू की गई नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत आज पुलवामा में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। इस मौके पर एलजी मौसूफ ने कहा कि नशे का कारोबार और दहशतगर्दी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की एक भारी तादाद नशे के हत्थे चढ़ चुकी है, लेकिन हुकूमत यह अजम कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर से नशे को नेस्तनाबूद किया जाएगा, और इस नीयत से हुकूमत ने ऐसी जंग छेड़ी हुई है जिसमें यूटी का हर बाशिंदा एक सिपाही की हैसियत से खड़ा है। एक रिपोर्ट के साथ पुलवामा से शौकत डार।
12: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात से पाक करने के अजम के तहत आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला पुलवामा में 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मिशन की एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अवाम की भारी तादाद ने शिरकत की और मनुष्यात के खिलाफ इज्तिमाई जदोजहद के अजम का इआदा किया। तकरीब में ताजिर अंजुमनों के नुमाइंदों, फ्रूट ग्रोवर्स, सरकारी मुलाजमीन, तुलबा व तालबात, गैर सरकारी तंजीमों, पुलिस अफसरान और आम लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जिला पुलवामा के चारों अराकीन असम्बली भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान पूरा माहौल मनुष्यात के खिलाफ बेदारी और समाजी इतिहाद के जज्बे से भरपूर नजर आया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तकबाल करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया मनुष्यात के खात्मे के लिए पूरी संजीदगी और तेजी के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बेदारी प्रोग्राम, सेमिनार, खेलों की सरगर्मियां और अवामी राबिता मुहिमात चलाई जा रही हैं, ताकि नौजवान नस्ल को मनुष्यात के मुजिर असरात से महफूज रखा जा सके। तकरीब के आगाज पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम सरकारी अफसरान, तुलबा व तालबात, पुलिस एहलकारों और अवाम के साथ मिलकर मनुष्यात के खिलाफ काम करने का हलफ लिया। हलफ में इस अजम का इजहार किया गया कि मुआशरे से मनुष्यात के नासूर को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और नौजवानों को इस तबाहकुन काम से बचाया जाएगा।

0: शर्बीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का कारवां पुलवामा पहुंचा एलजी मनोज सिन्हा की कयादत में। गूल से जम्मू जाने वाली बस हादसे का शिकार, एक शख्स हलाक, 25 जख्मी। बॉर्डर मचेल यात्रा को इमसाल महफूज बनाने के संजीदा इकदाम। और त्राल के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का पुरजोर मुतालबा। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए।

0: क्या बिजनेस की तरक्की को लेकर है फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
1: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के

0: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, बस नाम ही काफी है। मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामज।
3: तो क्या इस शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
2: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
3: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्रावनी हुआ। विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदार में,
2: मगर ये है आज सठा द्रो।
3: हाँ ना ना सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
4: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनायू सेहत मंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानयू। बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन हिज जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप कर।
5: इशूड इन पब्लिक इन ट्रस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: अरे वहाँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
7: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
6: नहीं माँ, वैसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, एक गोल्डन आ रहा है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
7: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
6: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
7: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
6: माँ, सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
7: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
6: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
7: शुक्र है, और डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
6: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं। इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
8: कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से एक जरूरी इतला। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने दाखिला नोटिफिकेशन नंबर 7 और नंबर 8 बराए 2026 के तहत मुश्तहर बीटेक और एमटेक प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। जो उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पहले जमा नहीं करा सके, उन उम्मीदवारों के लिए अहलियत की तफसीलात जमा कराने और अपडेट कराने की आखिरी तारीख अब 21 मई 2026 तक बढ़ा दी गई है। डायरेक्टरेट ने मजीद मतला किया है कि वो उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही दरख्वास्तें जमा कराई हैं लेकिन अपनी अहलियत अपडेट नहीं कराई है, वो भी अपनी अहलियत मुकर्रा तौसी शुदा तारीख तक जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख के बाद किसी भी किस्म की मजीद तौसी या अपडेट की इजाजत नहीं होगी।

0: डॉलरों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 49 जायदादें भी जब्त की गईं।
1: पुलवामा के हर घर, हर स्कूल, हर गली और हर दिल तक नशे के खिलाफ युद्ध का बिगुल खुद लोगों ने पहुंचाया। पिछले एक महीने में हमने केवल आंकड़ों में बदलाव नहीं देखा, बल्कि आवाम की रूह को जागते हुए अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का काम किया है। बारामूला में जिस तरह नशे के खिलाफ लोग जुटे और आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हें हमने और आप में से अनेक लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैंने कुपवाड़ा में हजारों नौजवानों और माँ बाप को नशे के खिलाफ दृढ़ संकल्पित होते हुए देखा। पिछले 39 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जनपदों में मैंने पड़ोसियों का सहारा बनते हुए देखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस चुप्पी को टूटते हुए देखा है जो वर्षों तक जम्मू कश्मीर में छाई हुई। आज वह चुप्पी नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज में तब्दील हो गई।
0: वाजे रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत 11 अप्रैल को जम्मू से की थी, जब से लेकर पुलिस, इंतजामिया और दीगर महकमों ने मुनशियात के नेटवर्क को खत्म करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल की। एलजी ने इस कभी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अंदिया देते हुए कहा कि एक तरफ ड्रग स्मगलरों को खत्म करने के लिए मुनज्जम कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए भी लाजमी इकदाम किए जाएंगे।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से बचाने के लिए दरकार इकदाम के ताल्लुक से वादी के एक फिल्म साज गुल रियाज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: वालदेन का बहुत अहम रोल होता है जब बात बच्चों को ड्रग्स से बचाने की हो। सबसे पहले अपने बच्चों से खुले दिल से बात करें, उनकी प्रॉब्लम सुने और उन्हें जज ना करें। ड्रग्स के नुकसान आसान लफ्जों में समझाएं, डराने के बजाय हकीकत बयान करें। बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें और अच्छी कंपनी की इंपॉर्टेंस समझाएं। घर का माहौल पॉजिटिव रखें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनकी हॉबीज को सपोर्ट करें। अगर बच्चे के बिहेवियर में अचानक चेंज आए, गुस्सा, तन्हाई या स्टडी से दूर हो, तो इग्नोर ना करें। रूल्स और बाउंड्रीज क्लियर हो लेकिन ट्रस्ट के साथ, और अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने से ना हिचकिचाएं। याद रखें, प्यार, समझ और सपोर्ट के साथ ही हम अपने बच्चों को ड्रग से बचा सकते हैं।
0: जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरक्षा अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुनशियात का नेटवर्क 1989 से दहशत पसंदी के साथ साथ काम कर रहा है और समाज में इसकी जड़ें काफी मजबूत हैं। आज बड़गाम में असलुक आलो नामी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए नशा मुक्त अभियान ने अब तक एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की है। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मसाजिद और ज़ियारतगाहों में भी अइमा हजरात इस बिद्दत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने सकाफती रिवायात और इखलाकियात को तहफुज देकर नौजवान पौध को इनसे रोशनास कराने की जरूरत पर जोर दिया। पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज अनंतनाग में गैरकानूनी तौर खशखाश काश्त करने वालों के खिलाफ 3 मामला दर्ज किए। पुलिस ने शोपियान जिले के कई तालीमी इदारों में मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों का इनकार किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आथूरा बारामुल्ला में मुनशियात मुखालिफ क्रॉस कंट्री दौड़ का इनकार किया गया। पुलिस ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 6 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफी मकदार में नशीली अशिया बरामद की हैं। पुलिस ने वेरीनाग में एक केमिस्ट शॉप को कवानीन की खिलाफ वर्जी की पादाश में सरबमोहर कर दिया। पुलिस ने पारिमपोरा श्रीनगर के ओएस अमीन डींठू नामी ड्रग स्मगलर की 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को अटैच किया। डोडा पुलिस ने डीपीएल डोडा में तहकीकाती अफसरों के लिए एनडीपीएस एक्ट से मुतल्लिक एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। पुलिस ने मंगनार इलाके से एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की हैं। डोडा पुलिस ने गंदोह सब डिवीजन में कई मेडिकल शॉप्स का मुआयना किया। जिले में मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों का भी इनकार किया गया। सांबा पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुरमंडल में एक बेदारी प्रोग्राम का इनकार किया। وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلموانی نے آج جموں میں جموں سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تحت عملائے جا رہے کلیدی نوعیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے ہدایات دیں کہ وہ تمام پروجیکٹوں کو سالانہ شری امرناتھ جی یاترا شروع ہونے سے پہلے مکمل کریں. بعد میں انہوں نے کئی پروجیکٹوں کا دورہ کر کے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. دریاسنا ناصر اسلموانی نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران شری امرناتھ جی یاترا

0: खवातीन के कौमी कमीशन ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के इश्तराक से यूनिवर्सिटी कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड पॉश से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कायम मकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर महीद्दीन संगमी और NCW की चेयरपर्सन विजया राहतकार ने खिताब किया। दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी कन्फेडरेशन ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वह यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में गुजर और बकरवाल तबके की रिहायशों को मुनहदम किए जाने के सिलसिले में मुदाखलत करें। डोमा कन्फेडरेशन की एक मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में कहा गया है कि स्टेट लैंड और मुनशियात रखने के नाम पर गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता कई लोगों के घर मुनहदम करके उन्हें बाल बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है और इस अमल पर फौरी रोक लगाई जानी चाहिए। मीटिंग में डोमा के दीगर जोमा समेत फेडरेशन के स्टेट सदर RK कलसोत्रा ने हिस्सा लिया। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 93 लाख रुपए मालियत की अराजी के एक फ्रॉड मामले में सेमसान बड़गाम में तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दीं। एक प्रेस बयान में क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने आम लोगों को सलाह दी है कि वो इस तरह की फ्रॉड करने वालों से खबरदार रहें और इस तरह के किसी भी मामले को क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के SSP अब्दुल वहीद शाह की नोटिस में लाएं। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरप्रस्त मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने जमीयत के रुकन और मारूफ ताजर गुलाम नबी हक्का के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए उनके लवाहकीन के साथ इजहार ताजियत किया है। जम्मू रेलवे डिवीजन के तहत आने वाले श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के टिकट चेक करने वाले अमले ने उस वक्त इंसानियत की एक रोशन मिसाल कायम की जब उन्होंने एक लापता बच्चे को अपने वालिदैन के साथ वापस मिलाया। दरअसल रेल अमले ने एक कमसिन बच्ची को अकेले में पाते ही पब्लिक एड्रेस निज़ाम के जरिए फौरी ऐलानात किए, जिसके नतीजे में बच्ची के वालिदैन वहां पहुंच गए और ज़रूरी लवाजमात पूरा करने के बाद उन्हें आपस में मिलाया गया। सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर जम्मू उचित सिंगल ने अमले की इस कोशिश को सराहते हुए कहा कि रेल इंतजामिया मुसाफिरों की सलामती और मदद के लिए कारबंद है। मौसम जम्मू खित्ते में गर्मी की शदीद लहर और वहां आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में आज दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जबकि वहां कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खित्ते के कई इलाकों में लू के नतीजे में पानी और बिजली की किल्लत पैदा होने लगी है। इंतजामिया ने इस सूरत का मुकाबला करने के लिए एक एहतियाती एडवाइजरी भी जारी की है। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें और कोई फ्रूट, पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा जो उनके कपड़े पहनने का जो होगा वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, थोड़ी सी ना फायदा हो जाता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सके।
0: इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:26 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:29 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
2: सामीन आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं हाँ।

0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे वादी की आवाज।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

जा रहे हैं। हमारे नौजवानों में खेल कूद के हवाले से काफ़ी सलाहियतें मौजूद है और वो मुल्की और बैनुल अक्वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ अजला में खेल कूद के बुनियादी ढांचे को मुस्तकम करके सरकार ने नौजवानों के लिए नई उम्मीदें पैदा की है। इतना ही नहीं बल्कि अब हमारी वादी में आए रोज़ मुल्की और बैनुल अक्वामी सतह के खेल मुकाबले हो रहे हैं और इस तरह यहाँ के नौजवान नशे से दूर रहकर अपने मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के कयाम के लिए 100 रोज़ा नशा मुक्त मुहिम शुरू कर रखी है और गुज़श्ता 36 रोज़ के दौरान वादी के मुख्तलिफ अजला में पद यात्राओं, बेदारी प्रोग्रामों और रैलियों का इनेकाद करके मंशियात के मौसर असरात के बारे में जानकारी दी गई और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इतना ही नहीं बल्कि इन 36 रोज के दौरान जम्मू कश्मीर में अब तक 800 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। मंशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल की जा रही 400 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के अलावा 300 ड्राइविंग लाइसेंस को भी मंसूख किया गया। इसके अलावा 150 ड्रग लाइसेंसेस भी मंसूख की गई। इस मुहिम के दौरान अब तक कई क्विंटल मंशियात बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बजाते खुद इस मुहिम की क्यादत कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों, रैलियों वगैरह में शामिल होकर लोगों को मंशियात के मुजिर असरात से बाखबर करा रहे हैं। इस मुहिम में सरकारी मुलाजमीन और स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के लोगों ने ये इरादा किया है कि जम्मू कश्मीर को हर कीमत पर नशा मुक्त करके ही दम लेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें महफूज रहे और खुशहाल जम्मू कश्मीर मुमकिन बन पाए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए जारी इस मुहिम में जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर तमाम मुतल्लिका एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रग माफिया के खिलाफ छापामारी की जा रही है जिसमें आम लोग पुलिस का भरपूर साथ दे रही है। गुज़श्ता 36 रोज के दौरान मंशियात के नेटवर्क पर काफ़ी हद तक ज़र्ब लगा दी गई है। न सिर्फ मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है बल्कि इस लत में पड़े यहाँ के नौजवानों को इससे निकलने और उनकी समाज में दोबारा बाइज्जत बाज आबादकारी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। इन 36 रोज के दौरान नशे में फंसे नौजवानों की एक बारी तादाद को नशा मुक्त केंद्रों में भर्ती किया गया है और उनकी काउंसलिंग की जा रही है ताकि दोबारा वो इस जाल में न फंस जाए और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बना सके। समाज का हर तबका दिलो जान से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए इंतजामिया के शाना बशाना काम कर रहा है और जहां कहीं भी लोगों को मंशियात फरोशों की जानकारी मिलती है वो फौरन पुलिस को इतला देकर ऐसे अफराद की गिरफ्तारी में मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहां अवाम ने मंशियात के कारोबारियों के साथ सोशल बायकॉट की है और लोगों का कहना है कि नौजवानों के मुस्तकबिल के दुश्मन अनासिर की समाज में कोई जगह नहीं और उनको अलग थलग करने की ज़रूरत है ताकि वो इस गंदे काम से तौबा करके एक बेहतर समाज के कयाम में अपना किरदार अदा करें। मुख्तलिफ मजाहिब के रहनुमा इस काम में खासा रोल अदा कर रहे हैं। मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वाराओं में हफ्ते में एक दिन इस काम के लिए वक्त दिया जा रहा है जिस दौरान लोगों, खासकर नौजवान पौध को मंशियात के मुजिर असरात के बारे में जानकारी फराहम करने के अलावा उन्हें इस लत से छुटकारा पाने में मदद की जा रही है। सामिन, प्रोग्राम के इस पड़ाव पर आइए आप और हम पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत से अलग होने के बाद से ही पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का रुझान पनपता गया और इस मुल्क में दहशतगर्द ताकतों ने सर उठाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान मजहब के नाम पर वजूद में आया और इस मुल्क के हुक्मरानों ने रोज़ अव्वल से ही अवाम में मजहबी मुनाफरत और भारत दुश्मनी का एहसास पैदा करने के लिए गुमराह कुन और मनगढ़ंत कहानियाँ रची, जिस वजह से इंतहा पसंद ताकतों को तकवीत मिली और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान हर तरह के दहशतगर्द ग्रुपों की आमाजगा बन गया है। पाकिस्तान के इन हालात का कभी अमरीका तो कभी किसी और मुल्क ने फायदा उठाकर अपने हदफ हासिल करने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान ने अमरीका जैसे मुल्कों का भरपूर साथ देकर अपने पाले दहशतगर्दों के जरिए मुख्तलिफ ममालिक को कमजोर कर दिया। मगर वक्त बदलने में देर नहीं लगती, आज पाकिस्तान खुद इसी दलदल में फंसता जा रहा है। मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की दहशत पसंदी की सोच में कोई तब्दीली आती नज़र नहीं दिखाई दे रही है। खुद दहशतगर्दी से जूझ रहा पाकिस्तान आज भी अपने अमन पसंद दहशतगर्द जमातों को बदस्तूर पाल पोस कर भारत और दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने की मजमूम कोशिशें कर रहा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की इस पॉलिसी के बावजूद बारहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने भारत को कमजोर करने और यहाँ तशद्दुद को भड़काने के लिए अपने पाले दहशतगर्दों की इमदाद और इयानत न सिर्फ जारी रखी बल्कि उन्हें अपनी सरजमीन पर घूमने फिरने की खुली छूट दे रखी। दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से कायम की गई कुछ दहशतगर्द जमातें अब अपने ही आका पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गए हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ ही कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी हुक्मरान इसके लिए कभी भारत तो कभी अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की मनगढ़ंत बातें कर रहा है। यहां पर पाकिस्तान ये भूल रहा है कि इन दहशतगर्दों के असली आका तो वो खुद हैं जिन्होंने उन्हें भारत और अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार कर रखा था। भारत के सब्र का पैमाना जब लबरेज हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कायम दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह कर दिया, मगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को बचाने के लिए सामने आया और उसने

भारत पर जवाबी हमला किया और बाद में क्या हुआ ये दुनिया जानती है। पाकिस्तान जंग रोकने की भारत से गुहारे लगाने पर मजबूर हुआ और भारत के पैरों पर पड़ने के बाद भारत ने एक बार फिर जंग बंदी करने से इत्तेफाक करके पाकिस्तान को सुधरने का मौका दिया, मगर पाकिस्तान तब भी अपनी दहशतगर्दाना पॉलिसी को तर्क करने को राजी नहीं हुआ और वो दोबारा इन दहशतगर्द तंजीमों को खड़ा होने के लिए मदद करने में मसरूफ हुआ। भारत खासकर कश्मीर में निहत्ते लोगों के कत्ले आम की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा तंजीम, जिसके अड्डे को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया गया, को फिर से ताकत बख्शने के लिए पाकिस्तानी फौज और ISI ने फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज ISI की मदद से ये तंजीम फिर से अपने कैडर को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लश्कर तैयबा ने अब अपनी ख्वातीन विंग को तश्कील देकर भारत में फिर से तबाही मचाने का प्लान बनाने का ख्वाब देखा है। इस तंजीम ने जमातुल मोमिनात नामी तंजीम का कयाम अमल में लाया है, जिसकी सरबरा मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को मुकरर किया गया है। कहा जाता है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, यही हाल पाकिस्तान का है। वो कभी भी दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तंजीम के लिए रिक्रूटमेंट का अमल शुरू किया गया है और ये काम भावलपुर पाकिस्तान के मरकज उत्मानुल वली में चल रहा है। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि सादिया अजहर का खावंद यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर तैयबा की इस खवातीन विंग में जैश मोहम्मद के कमांडरों की बीवियों और समाज के कमजोर तबकों के खवातीन की भर्ती करा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो लश्कर तैयबा ISIS लोको हराम हमास जैसी दहशतगर्द जमातों के इश्तराक से खवातीन खुदकुश बम्बार तैयार करने की कोशिश कर रही है। इस काम के लिए पाकिस्तान ने 3.91 बिलियन डॉलर का फंड जमा करने के लिए ऑनलाइन मुहिम शुरू कर रखी है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज और ISI अपने दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को दोबारा मजबूत करने और उनकी हर तरह की इमदाद व इयानत करने में मसरूफ है। दूसरों के लिए घड़े खोदने वाला पाकिस्तान खुद आज तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों के हाथों पिट रहा है। अपनी नाकामियों और दहशतगर्दाना पॉलिसियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत पर TTP का साथ देने के इल्जाम लगाता आया है। यहाँ पाकिस्तान ये बात भूल रहा है कि TTP भी उसकी ही पैदावार है और भारत का उसके साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भारत कभी भी दहशतगर्दी के हक में नहीं रहा है बल्कि इंसानियत और दोस्ती का खोहा रहा है। ये बात दुनिया जानती है कि भारत हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है और इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम रहा है। दहशतगर्दी चाहे भारत में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में, भारत इसके खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने के साथ साथ बैनुल अक्वामी बरादरी की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेश रहा है। पाकिस्तान को अब अपने ही पाले हुए दहशतगर्द रुला रहे हैं, तो इस वक्त भारत या अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाना बेवकूफी और बदनीयती के सिवा कुछ भी नहीं है। भारत तमाम मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, मगर पाकिस्तान भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मनफी जवाब देता आया है, जिस वजह से दो मुल्कों के ताल्लुकात सुधर नहीं पा रहे हैं। सामिन, पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम में और भी बात करेंगे, पहले आप और हम सुनते हैं ये गजल।

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। समय 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तानी सियासतदानों ने वहां के लोगों को कई ख्वाब दिखाए थे, मगर उनके ये ख्वाब पूरा करने के बजाय इन हुक्मरानों ने पाकिस्तानी आवाम को मुसीबतों के दलदल में फंसाया। और आज हाल ये है कि जहां मुल्क के अवाम दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहीं मुल्क की मईशियत बदहाली का शिकार है। रोज़े अव्वल से ही यह मुल्क गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबता गया और इस तरह मुल्क तरक्की से कोसों दूर रहा। यहाँ के माजी के सभी हुक्मरानों ने अपने जेब भरने और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए मुल्की असासों का लूट खसूट किया। इतना ही नहीं बल्कि फौजी जनरलों और सियासतदानों ने मुल्क में इंतहा पसंदी को बढ़ावा देकर दहशतगर्दाना पॉलिसी अपनाकर मुल्की असासे दहशतगर्दों की इमदाद व इयानत पर सर्फ किए और अपने हमसाया मुल्कों को कमज़ोर करने की नापाक साजिशें रची। इस तरह के हालात की वजह से मुल्क की इक्तिसादी हालत बद से बदतर होती गई और अवामी मुश्किलात बढ़ती गई। जो रकम अवामी फलाह बहबूद के लिए खर्च होना था, वो इन हुक्मरानों ने अपनी ऐशो इशरत और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने पर खर्च की। आज तक की सभी सरकारों ने मुल्क को इस रास्ते पर चलाने के लिए गैर मुल्की कर्जे लिए और फिर इन कर्जों का सूद चुकाने के लिए मजीद कर्जे लिए गए। आज हाल ये है कि पाकिस्तान पर 97,000 अरब रुपए के गैर मुल्की कर्जे हैं, जिस वजह से मुल्क की मईशियत मफलूज होकर रह गई है। इसी वजह से मुल्क के अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। सरकार कर्जों की वजह से अवाम पर नए नए टैक्स आयद कर रही है। पाकिस्तान के ही तजियाकारों का मानना है कि जितना कर्जा माजी की सरकारों ने लिया, उससे दुगना कर्जा गुज़श्ता 4 साल में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने लिया है। ये लोग इन कर्जों पर बढ़ रहे सूद को चुकाने के लिए मजीद कर्जे ले रहे हैं, जिस वजह से मुल्क कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर हमसाया दुश्मनी की पॉलिसी से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने मुल्क की आवाम के मुफादात को दरकिनार करते हुए भारत और अफगानिस्तान से दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान भारत को मिटाने की धमकियां देकर पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा रहा है। ऐसे में गरीबी की चक्की में पिस रहे पाकिस्तानी आवाम अपने इन हुक्मरानों से सरापा एहतजाज है। यहाँ के तजियाकार पाकिस्तान को बार बार मशवरा दे रहे हैं कि वो दहशतगर्दी की पॉलिसी तर्क करके रकूमात अवामी फलाह बहबूद पर खर्च करें, ताकि अवाम को कुछ राहत मिल सके। सामिन, ये तो थी बात पाकिस्तान की और अब प्रोग्राम के आखिर पर आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज़। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

आप वादी की आवाज प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं, मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन प्रोग्राम। हेलो, आपकी फरमाइश सुनिए शब 10 बजे। प्रोग्राम पेश कर रही हैं रोहित मुश्ताक।

0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्स और FM 103.5 मेगाहर्ट्स पर। आप हमें DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर रहे हैं। रात के 8:30 हो रहे हैं। समय आइए समाप्त करते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की कामयाबियों के बारे में हमारे शोभा खबर का तैयार करदा ये खसूसी प्रोग्राम। प्रोग्राम के मेहमान हैं जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी, और इनके साथ हम कलाम हैं डायरेक्टर न्यूज़ और शोभ खबर के सरबरा तारिक राथर।
1: सामईन आदाब, J&K बैंक से मुतालिक 12 मई को हमारे खसूसी प्रोग्राम के पहले शुमारे में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने कई पहलुओं पर रोशनी डाली। इस खसूसी प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी शुमारे में आज हम एक बार फिर अमिताभ चटर्जी से गुफ्तगू करेंगे। अमिताभ चटर्जी सर, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खैर मकदम है।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: सर, डिजिटल दौर है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज हुई हैं बैंकिंग में भी हर जगह, तो ऐसे बताया जाता है जैसे आपने कहा कि अब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स, जैसे आपने कहा कि जैसे आपने प्रॉफिट की बात की या बैंकिंग सिस्टम आपने हमें समझाया, तो ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है, लोग असल में ट्रेडिशनली बैंक पे जाना चाहते हैं। अगरचे देयर आर टेक्नोलॉजी, वी हैव ऑल डिजिटल यू नो द मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अदर थिंग्स, फिर भी लोग ये समझते हैं कि हमें बैंक में जाना चाहिए, अपने बैंक में जाएं, वहां अच्छे से देखें, पर्सनली देखें, इन पर्सन, तो उसमें वही ह्यूमन रिसोर्स का जो आता है, तो होपफुली हम समझते हैं कि इसको आप एड्रेस कर रहे हैं सर, इज इट सो?
2: देखिए, दोनों चीज है। जहां एक तरफ आप जैसा कह रहे हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्स को एडिक्वेट होना चाहिए ब्रांचेस को केटर करने के लिए और कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को, पर कस्टमर्स को भी ये समझना चाहिए कि अभी जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी को जितना ज्यादा अडॉप्ट करेंगे उतना कन्वीनियंस है, उतना बैंक के लिए सहूलियत है, बैंक का जो कॉस्ट है उस पर कम आता है, और दूसरा है सेफ्टी और सिक्योरिटी भी कुछ हद तक इम्प्रूव करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करने में। तो ये दोनों तरफ से है, जहां हम एक तरफ कोशिश करते हैं कि हमारे ब्रांचेस में सफिशिएंट लोग रहें कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, वहां दूसरी तरफ कस्टमर्स को भी ये समझना चाहिए कि ये भी बहुत जरूरी है कि जो चेंजिंग सिनेरियो है और टेक्नोलॉजी का इतना बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का यूज, तो उसको भी यूज करें। और हम J&K बैंक में हम किसी से कम नहीं है, किसी भी बैंक का जो टेक्नोलॉजी का जो स्टैंडर्ड है हमारा वही स्टैंडर्ड है, हम और अच्छे से कोशिश कर रहे हैं लोगों को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करना थ्रू टेक्नोलॉजी। पर हाँ, हम इस चीज को भी मानते हैं कि हम टोटली डिजिटल भी नहीं रह सकते, टोटली फिजिकल भी नहीं रह सकते, तो एक बीच का रास्ता है जिसको हम फिजिटल कहते हैं, कुछ फिजिकल ब्रांचेस भी रहे।

0: और कुछ डिजिटल सर्विसेज भी रहेंगे। इन दोनों का मिक्स होगा और बेस्ट सर्विसेज जो है ना कस्टमर को हम देने की कोशिश करेंगे।
1: सर, देयर इज अ यू नो लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन लाइक वी हैव सीनियर सिटीजन, या उनको डिजिटल मोड ऑफ यू नो कम्युनिकेशन दे आर नॉट वेल वर्सड, या हमारी माएं बहनें ऐसे भी हैं, नानियां हम कहेंगे, दादियां हम कहेंगे, उनका भी बैंक के साथ वास्ता है, तो उन लोगों के लिए वही है जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स वहां पे होगा, दे विल फैसिलिटेट देयर नो
0: जी
1: देयर वर्किंग
0: बिल्कुल
1: एंड देयर ओन
0: बिल्कुल,
1: कैपेबिलिटी सर।
0: वो तो हम कर ही रहे हैं ना, मैंने कहा आपको ऑलरेडी हम कर रहे हैं और फर्दर रिक्रूटमेंट भी करेंगे। देखिए हम किसी भी सेक्शन को डिप्राइव नहीं करना चाहते, और मैं इस बात को मानता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सीनियर सिटीजन है वो हमारे सबसे लॉयल कस्टमर्स हैं, तो उनको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए तो हमारे फिजिकल ब्रांचेस रहेंगे ही हमेशा। पर हाँ, आप देखेंगे किसी भी बैंक का 95 से 96% जो ट्रांजेक्शन होता है वो डिजिटली होता है आज के डेट में। तो चेंजिंग टाइम्स के साथ तो चेंज करना पड़ता है, हम भी चेंज कर रहे हैं और लोगों को अल्टीमेटली समझना पड़ेगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपको मजबूरी में डिजिटल माध्यम यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैंने कहा कि हम साल में 60-65 हजार कैंप्स करते हैं जस्ट टू प्रोवाइड ये लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कैसे सेफ वे में आप डिजिटल चैनल्स को भी यूज कर सके। पर हाँ, हमारे फिजिकल ब्रांचेस हमेशा रहेंगे, जब तक हमारे लोगों को उनकी जरूरत है हम सर्व करते रहेंगे।
1: एक और चीज, जैसे J&K बैंक जो है वीकली जो आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, रेडियो की तरफ आता हूँ, 2001 से चल रहा है, तकरीबन 1300 एपिसोड्स हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो J&K और लद्दाख में सुना जाता है प्रसार भारती के आकाशवाणी चैनल से, तो इसका मतलब यह है कि आप सिल्वर जुबली लैंडमार्क पहुंच रहे हैं,
0: जी
1: तकरीबन 25 साल हो रहे हैं, तो सर
0: जी
1: इसको आप कैसे देखते हैं और इसको आप खुशी से सेलिब्रेट करना चाहेंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, और एक्चुअली शुक्रगुजार है कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें एक मीडियम मिला हुआ है जिसके थ्रू हम उनको उनके पास पहुंचा सकते हैं। और मेरे ख्याल से जब 25वां साल चलेगा या हम पहुंच रहे हैं उसमें, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम पॉपुलर है तभी इतने साल से चल रहा है, अगर नहीं पॉपुलर होता तो नहीं चलता। एक ये भी माध्यम है लोगों को अवेयर करने का कि बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है और कैसे आप सेफली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको एक अच्छे तरीके से एक सेलिब्रेशन के रूप में हम मनाना चाहेंगे, डेफिनेटली।
1: सर एवरीथिंग इज चेंजिंग, जैसे आपने भी कहा डिजिटल मोड में, जैसे हमारे कस्टमर्स को समझ में, लेकिन इस मीडिया के हवाले से, आकाशवाणी के हवाले से, इसमें आजकल पॉडकास्टिंग आती है, बहुत सारे मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सर ऐसे कोई प्लान है आपके पास कि इसको आप उन लाइन पे ले जाना चाहेंगे जिसमें पॉडकास्टिंग हो और आपका ही जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बेहतर तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचेगा, क्लाइंट्स तक पहुंचेगा, जैसे आपका रेडियो प्रोग्राम जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है आकाशवाणी से, इसमें जो यू इनपुट है वो बहुत कम रहता है, देयर शुड बी सम ऑडियो इनपुट्स कंसर्न्ड ऑफिसर, सर इस तरह की रिक्वायरमेंट बन रही है, लोग ऐसा कुछ फीडबैक दे रहे हैं, सो वुड यू लाइक टू पुट इट ऑन दोज काइंड ऑफ रेल्स?
0: इस इंटरव्यू के माध्यम से तो इस बात के बारे में, इस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स में बोलना मुश्किल है। इस पे बैठ करके हमारा जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स है उसपे बात करके इस पे हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं। एट द मोमेंट मैं ऑफ हैंड नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बैंक में अगर कोई चीज डिसीजन लेना है तो उसपे काफी डिलिबरेट करना पड़ता है, फिर हमारा बोर्ड है, बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए डेफिनेटली हम बैठ करके हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है, हम इसको आगे ले जा सकते हैं।
1: सर J&K बैंक शेयर्स की बात होती है, कस्टमर्स किस तरह से समझेंगे ये शेयर बिजनेस या ट्रेडिंग क्या है, और उनको शेयर परचेज या जो भी है इसका किस तरह से, उनको फ्रॉम J&K बैंक आप किस तरह से उनको एश्योर करेंगे कि दिस इज अ वेरी, शेयर्स में किस तरह का होगा, उनका प्रॉफिट भी होगा?
0: देखिए, अगर आप सिर्फ J&K बैंक के शेयर्स की बात करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसा मूवमेंट होता है J&K बैंक के शेयर्स में। पिछले एक साल में J&K बैंक के शेयर्स ने करीब करीब 50% का इम्प्रूवमेंट किया है। 23 अप्रैल से आज तक में जो शेयर का प्राइस है मार्केट में, वो करीब करीब 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वो अपनी जगह पे अलग है, लेकिन मैं किसी कस्टमर को बिना सोचे समझे, बिना किसी स्क्रिप्ट को समझे कभी भी मैं इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता हूँ। हमारा एक सब्सिडियरी है JKBFSL, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडियरी है, वो शेयर्स सेल परचेज का काम करती है। उनके यहाँ पे लोग हैं जो इस चीज के बारे में डिटेल्स में कस्टमर्स को समझा सकते हैं। किसी भी सिटीजन को अगर शेयर परचेज और सेल में इंटरेस्ट है तो वो जेके बी एफ एस एल से कॉन्टैक्ट कर सकता है, वहाँ

0: अकाउंट खोल सकता है और उनसे ये सर्विसेज ले सकता है। पर ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक जनरल पर्सन जिसको शेयर्स के बारे में बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, उनको शेयर्स में ट्रेडिंग करने से पहले उसकी समझ होनी चाहिए और एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज शेयर्स थोड़ा रिस्की आइटम है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में या म्यूचुअल फंड्स में करना एक नॉर्मल सिटीजन के लिए ज्यादा सेफ होता है।
1: जैसे मैंने पहले ही शुरू में ही कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर के लोग या लद्दाख के लोग इसको J&K बैंक को अपना बैंक समझते हैं, फीलिंग किस तरह आपकी है कि जब ऐसा लोग कहते हैं, और आप किस तरह से समझते हैं कि आप कितनी जिम्मेदारी का काम है ये कि जब इतना भरोसा लोगों को है J&K बैंक पे?
0: देखिए, इसका तो एक बहुत क्लियर सबूत है। अगर हम अपना प्रेजेंस देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो सभी ब्रांचेस के साथ अगर करेंगे तो सिर्फ 37% ब्रांचेस हैं हमारे। 63% ब्रांचेस दूसरे बैंक्स के हैं टोटल में, लेकिन बिजनेस का शेयर हमारा 60% है। तो ये एक ही चीज साबित करता है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे ही भरोसा है और होना भी चाहिए। ये मैंने जितनी स्कीम्स के बारे में कहा, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कहा, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जितने भी काम है, चाहे वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत CSR फंड्स का यूज करने का जहां तक सवाल है, ये सारा J&K बैंक ही करता है इस सोसाइटी के अंदर। तो जहां मैंने पहले भी कहा कि जहां यहाँ के हमारे बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत कंसर्न रहते हैं यहाँ के सिटीजन के लिए, वैसे सिटीजन भी बहुत लॉयल हैं इस बैंक के लिए, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके।
1: स्मॉल बिजनेस यूनिट्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसी बात आती है इन पब्लिक डोमेन में कि एनकरेज नहीं किया जाता है टू प्रोवाइड लोन्स या फाइनेंशियल सपोर्ट एज कम्पेयर टू बिग हाउसेस। इस परसेप्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, हमारे टोटल लोन पोर्टफोलियो का करीब करीब 50% से ऊपर जो है वो स्मॉल बिजनेसेस का ही है, 60%। इनफैक्ट मैंने पिछली बार जो उसका फिगर देखा था, 63% हमारा जो लोन पोर्टफोलियो है ना वो स्मॉल बिजनेसेस का है, चाहे वो MSME का हो या फिर उसका एग्रीकल्चर का हो या ट्रेडिंग का हो या किसी का भी। तो हम तो हमेशा प्रमोट करते हैं, और मैंने अभी अभी बताया जो पीछे हमारा जून महीने में जो स्कीम आया था मिशन युवा का, उसमें हमने 25,000 लोगों को ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे लोन्स में हमने दिए हैं। बेसिकली हम काम ही कर रहे हैं इस एरिया में सबसे ज्यादा, और हमारे बड़े लोन्स बहुत कम हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, हमारे ज्यादा छोटे लोन्स हैं, मतलब टोटल वॉल्यूम में भी नंबर्स में भी, नंबर्स में तो बहुत ज्यादा हैं। तो हमारा कोई ऐसे हमारा परहेज नहीं है कि किसी भी सेक्टर में, बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी हमारा सेम बिहेवियर रहता है, उनको भी हम वेलकम करते हैं अपने बैंक में। उसी तरह से छोटे लोन्स डेफिनेटली हम करते हैं। MSME का जो पोर्टफोलियो हुआ हमारा 20-22 हज़ार करोड़ का है, जो बिल्कुल छोटे छोटे लोन्स हैं, तो हम तो उसपे ही काम कर रहे हैं आज, एक अभी नहीं पिछले 2-4 दशक से ये काम कर रहे हैं।
1: सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से किस तरह आप इसके बारे में कहना चाहेंगे कि J&K बैंक कितना आगे है या कितने प्लान्स हैं इसके बारे में?
0: देखिए, अभी हमारा जो प्रॉफिट है उसका तो 2% हम यूज करते हैं CSR में, वो मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के तहत। हर साल हम 50 करोड़, 50-55 करोड़ रुपया हम CSR के तहत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनके लिए हम खर्च करते हैं, और करीब करीब एंटायर अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है, और हम आगे भी करते रहेंगे। जितना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे।
1: चटर्जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर एंड एनलाइटनिंग अवर यू नो लिसनर्स एंड योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स अबाउट लेटेस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बैंक।
0: थैंक यू सर, थैंक
1: सर
0: यू वेरी मच।
2: सामईन, इसके साथ ही J&K बैंक पर खसूसी प्रोग्राम सीरीज इख्तिताम को पहुंचती है। आप अपना फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर्स इश्फाक शाह और कौशिकी कश्यप के अलावा रिकॉर्डिंग मुआविन मीर अब्दुल हमीद के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।
3: समय ये था हमारे शोबर खबर का तैयार करदा खसूसी प्रोग्राम।

0: सामने मोहतरम, 8:45 हो रहे हैं। फिलहाल के लिए हम आकाशवाणी दिल्ली का रुख करते हैं हिंदी खबरों के लिए।
1: पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और

0: हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है।

0: ने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।

विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच

0: मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात के ठीक 9 बजे हैं। आइए आपको एलओसी करगिल फिल्म का ये नगमा सुनवाते हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

एलओसी करगिल फिल्म से आपने ये नगमा सुना, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। अगली आवाज़ सोनू निगम और अलका याग्निक की।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में आप फिल्म रिफ्यूजी से ये नगमा सुन रहे थे। ये नगमा लिखा है जावेद अख्तर ने और मौसीकी तरतीब दी है अनु मलिक ने। 8:15 हो रहे हैं, आइए आकाशवाणी दिल्ली का रुख करते हैं उर्दू खबरों के लिए।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनरल मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक

वजीर दिफा राजनाथ सिंह तीन रोजा सरकारी दौरे पर आज जनूबी कोरिया के सियोल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दोतरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वो अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निमटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में आज मुनक्किदा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और तरक्की के तस्वुर के साथ काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मरतबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुबतला कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज और अवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अर्जदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा ना हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज जुमेरात को फाल्टा असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात से अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। जनाब खान ने एक बयान में कहा कि उनका यह फैसला खित्ते में अमन और तरक्की बनाने की गरज से लिया गया है और उन्होंने बीजेपी की क्यादत वाली नई सरकार की जानिब से फाल्टा के लिए ऐलान किए गए खसूसी पैकेज का खैर मकदम किया। एक बयान में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जहांगीर खान के नाम वापस लेने का फैसला उनका अपना निजी फैसला है और यह पार्टी का फैसला नहीं है। अब जबकि खान इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं तो अब मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दीबांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुलरजाक मुल्ला और सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी के दरमियान है। रूस ने तस्दीक की है कि भारत की सदारत में इस बरस नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी यूरी योशाकोव के हवाले से कहा कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम अरसे में जनाब पुतिन का भारत का यह दूसरा दौरा होगा। वो पिछली मरतबा 23वें भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे जो दिसंबर 2025 में हुई थी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने जुमेरात तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जनूब मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में भी गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, क्राइकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की सरकारी वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिले के लिए एंट्रेंस इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC के हेडक्वार्टर्स में होगा। किसी भी मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर का इम्तिहान दे रहे तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की आइंदा घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे और KL राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल ODI टीम के भी कप्तान रहेंगे जबकि सुरेश अय्यर नायब कप्तान बनाए गए हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर खिलाड़ी जडेजा को आराम दिया गया है। स्पिन गेंदबाज मानव सुथर और गेंदबाज गुरनूर बरार अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे जबकि प्रिंस यादव को

0: पहली मरतबा ओडीआई टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट मैच 6 जून से मुलानपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 14 जून से धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में ओडीआई मैच खेले जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मैच जारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 221 रन का निशाना रखा है। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई भी की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रात के 9:30 बजे हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: बज़्म-ए-शार,
4: सामीन कराम, पेश खदमत छु अजुक ये बज़्म-ए-शार प्रोग्राम। यत अजकिस प्रोग्रामस मज यम शोराय किराम हिस्से निन, तिहंद असमाय ग्रामी छ मोहतरम अकरम वानी गामी, मोहतरम फानोस जावेद, मोहतरमा सुरखाब दिलनवी, मोहतरम मीर मोहसिन हसन, मोहतरम गुलाम नबी दिलनवाज तो ब रंजूर तिलगामी। इब्तदास मज कर ब गुलाम नबी दिलनवाज सबस गुजारिश की तिम करन यम मुशारिश सदारत कबूल। गोडनेथ कर ब इल्तिमास मोहतरम अकरम वानी गामी सबस कि तिम करन पन सरताज तो सदरवार कलाम पेश। मोहतरम अकरम वानी गामी,
5: शारज तिम खाब न गए पूर न तिम रोज अच्छन मज, तिम खाब न गए पूर न तिम रोज अच्छन मज, अरमान पनन गए मे वटिस जून पछन मज, अरमान पनन गए मे वटिस जून पछन मज, अस थो करित बर लबन अंदर सब्ज गच, अस थो करित बर लबन अंदर सब्ज गच, अस थो तमा सूर नेबर कतरि मचन मज, अस थो तमा सूर नेबर कतरि मचन मज, वो मोत वई के ओस डुयत न्यूस तना यिप, वो मोत वई के ओस डुयत न्यूस तना यिप, ते वरी न के द्राव नबुर दान कुछन मज, कह फुल ते अगर ओ सु छुकरो हवावन, कह फुल ते अगर ओ सु छुकरो हवावन, जिदार अहलम ऐस तो सुमरो मछन मन, जिदार अहलम ऐस तो सुमरो मछन मन, शहजार सहनस ऐस कुनी बून चटन आज, शहजार सहनस ऐस कुनी बून चटन आज, जरमुन न सु सब्जार न सु शहजार अछन मन।
6: शारज
7: इरशाद,
6: वन सुथ आव तुथ द्रव मे निश
7: मे निश
6: रस खंज ते मे निश ब्यूठ न ठहरव मे निश रस खंज ते मे निश ब्यूठ न ठहरव मे निश तूफान तुलित गो तो दिलच दर उड़ तूफान तुलित गो तो दिलच दर उड़ क्या जान समंदर वो कुस वाव मे निश क्या जान समंदर वो कुस वाव

0: दिनों
1: विदेश
0: से जान लोल सखत बेमार मदनो मेथोम पान परित तद्रायस खान बीरो।

0: मानस वो छोवे छुकोता लियाकत जमानस। रिंजो सब या शेयर सुन थे तो वजह उमर गई वदा तई रिवा जाने जाना,
1: उम्र गई वदा
0: उमर गई वदा तई।

0: प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश लेकर मैं रोहित मुश्ताक आप सबकी खिदमत में हाजिर। सामईन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफत होंगे, खुश खुर्रम होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपनों के साथ खैरियत से होंगे। सामईन, आए करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज इस फोन कॉल से। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो, आपकी फरमाइश।
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं अर्शद बोल रहा हूँ, बसंत बाग से।
0: अर्शद जी, बसंत बाग से।
1: जी जी
0: जी, अर्शद जी, कैसे हैं आप?
1: जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का करम है और बहनों की दुआई होनी चाहिए।
0: इंशाल्लाह हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और अल्लाह का करम भी हम सब पे बना रहे। अर्शद,
1: आपको भी अल्लाह ताला सलामत रखे।
0: आमीन सुमा आमीन। क्या सुनेंगे आज?
1: जी, आज मुझे एक गीत की फरमाइश करनी है।
0: शौक से?
1: कुमार सानू ने गाया है। गीत के बोले, हंसना है, रोना है, पाना है, खोना है, किस्मत का तो यही पताना है। फिल्म का नाम है किस्मत।
0: अच्छा अच्छा
1: कुमार सानू ने गाया।
0: बिल्कुल, आप तक जो है आपकी पसंद का नगमा जरूर पहुंचाएंगे।
1: जी, मेहरबानी आपकी।
0: आपके साथ और कौन कौन सुनना चाहेगा?
1: जी, मेरे पास मेरा मासेरा भाई एच श्याम साहब और एक खालिद साहब, बस।
0: चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम,
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है? मैं आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: मैं दुआ ठीक हूँ, अच्छे से जी। मैं मैम शफात बात कर रहा हूँ, सोरा से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी शफात, कैसे हैं आप?
1: मैं दुआ आप ठीक हो मैम? तो
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक।
1: मैम मुझे सॉन्ग सुना था आज,
0: कौन सा सॉन्ग सुनेंगे?
1: मोहित का नाम है शोला और शबनम।
0: शोला और शबनम।
1: हाँ, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का हमारा।
0: जी, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। और कौन सुनेगा आपके साथ?
1: तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स है, कुछ पहले तो साहिल है और है मेरी बेस्ट फ्रेंड मसरत
0: जी,
1: और है मुनीर खानियार की। तो
0: चलिए शफात जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के
1: पहले
0: लिए।
1: मैम, पहले मैं आपका बहुत बड़ा थैंक यू अदा करता हूँ कि जब मैंने पहली बार आपसे बात की तो मेरी कॉल शामिल हो गई और मेरा सॉन्ग भी चला।
0: ज़रा नवाजिश, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू,
1: सलामुअलैकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मेरी बात रोहित मुश्ताक से हो रही है?
0: जी
1: आप कैसी हो मैम?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं?
1: बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है। आपकी पूरी टीम जो है वो ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, और तहसील है काजी, गांव है
0: अपना
1: मेरा
0: नाम बताएं।
1: किशिगुंड सांगरन गांव है। मेरा नाम है सयार अहमद।
0: दरअसल आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही है। अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम है सयार अहमद गनाई।
0: सैयार अहमद गनाई।
1: हाँ जी,
0: जी सैयार, क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे एक गाना सुनना है, एक पुराना नगमा है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का।
0: अरे वाह,
1: इस
0: पगला
1: ये
0: कहीं
1: नाइनटीन
0: का।
1: 1970 में फिल्म आई है।
0: हाँ,
1: इसका जो नगमा है वो है ना, वो तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे।
0: अरे वाह, बहुत ही प्यारा नगमा है।
1: मुझे बहुत पसंद है ये गाना। तो मैं रेडियो कश्मीर का एक रेगुलर लिसनर हूँ,
0: जी
1: आपके
0: जी
1: जितने भी प्रोग्राम हैं बहुत शौक से सुनता हूँ। हाँ
0: कैसे
1: हाँ
0: लगते हैं बाकी सारे प्रोग्राम्स भी हैं आपको?
1: वैसे आपके जितने भी प्रोग्राम है ना वो सारे अच्छे ही होते हैं। इन्फॉर्मेशन होती है प्रोग्रामों में,
0: बिल्कुल
1: या
0: सही,
1: जो हमारे बाकी लिसनर जो होते हैं उनकी प्यारी प्यारी बातें जब सुनने को मिलती है ना, बहुत कुछ
0: बिल्कुल
1: सीखने को भी मिलता है और बड़ा अच्छा भी लगता है।
0: बिल्कुल सही। देखिए सैयार, जब मुख्तलिफ एरियाज से हमारे साथ कॉलर्स जुड़ते हैं ना, किसी भी प्रोग्राम में, या ख़त के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, तो यकीनन हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और एक दूसरे के बारे में जानने को भी मिलता है। ये बताएं सैयार, आपके साथ और कौन सुनेगा ये नगमा?
1: मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि वो मुझे बार बार बोलते हैं कि आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन हमारा नाम नहीं बोलते आप।
0: अरे शौक से आप उनके नाम बताएं।
1: यह है सोफी मुख्तार है हरी पारी गांव अवंतीपुरा से, और शबीर अहमद भट्ट है पोनीमा कुलगाम से, और उजैर है थजीवारा अनंतनाग से। क्या है
0: ओके।
1: कि मैम, आपको पता है कि मैंने आपसे इससे पहले मैंने आपके साथ बात की है, लेकिन बहुत अरसा हो गया, तब से तकरीबन 2008-09 की।

0: बात है
1: जी बिल्कुल
0: जब आप
1: बिल्कुल
0: जीवानी में काम करती
1: एग्जैक्टली भाई,
0: है ना,
1: आपकी
0: वो एक
1: याददाश्त की तो दाद
0: प्रोग्राम,
1: देनी पड़ेगी।
0: एक प्रोग्राम आप करती है, वो प्रोग्राम था हेलो आपकी पसंद।
1: बिल्कुल सही, और उसमें आप वक्तन फवक्तन कॉल किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता ही है, अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो लाइन गुनगुना के सुनाओ।
1: जी बिल्कुल।
0: तुम मुझे यूं बुला

0: संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। वाह क्या बात है सैयार, सही मानू में आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है और मन को मोह देती है। चलिए आपका बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया,
1: शुक्रिया आपका, बहुत बहुत
0: आपका
1: शुक्रिया
0: भी
1: आपका।
0: शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनिए अपने सभी साथियों के साथ अपनी पसंद का नगमा।
1: तुम

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी, मैं गुलाम हसन बोल रहा हूँ, नाइट से कनीपुरा से।
0: गुलाम हसन जी, कैसे हैं आप?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी नेक दुआ होनी चाहिए।
0: इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ हैं। ये बताएं, क्या सुनेंगे आज?
1: जी, फिल्म हम है राही प्यार का एक नगमा है,
0: कौन सा नगमा?
1: घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है।
0: जी बिल्कुल, हम आप तक ये नगमा ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनिए अपने सभी साथियों के साथ अपनी पसंद का ये नगमा।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम। ठीक
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: छो अजीजी?
0: अलहमदुलिल्लाह, कम छो?
1: बस घनासान पेट मोहम्मद अब्दुल्ला नजार है।
0: मोहम्मद अब्दुल्ला नजार।
1: हाँ
0: तु छु ठीक पट?
1: वार वाई थे ने।
0: आमीन आमीन। वन तो कुस फिल्मे बात छु बोजुन आज?
1: बोलूँ सो रोते रोते हंसना सीखू अंदा कानून बोलना है।
0: बिल्कुल जरूर वातनाओ तह ताम तह सत कुछ यहाँ बे बोजुन। हेलो समीन, ये कॉल जो है ड्रॉप हो गई, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करेंगे। आप जो है अंधा कानून से ये खूबसूरत सा नगमा अपने साथियों के साथ एंजॉय करें।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम। ठीक
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: हो मैम जी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बोल रहे?
1: लाल हसन गोजर त्राल पंजे से बोल रहा।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: बस काम पर बिजी,
0: कौन सा
1: बोल
0: काम
1: ही
0: है
1: सकता हूँ।
0: आपका?
1: जो खेती बाड़ी का काम करता हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बताएं, कौन सा नगमा सुनना पसंद करेंगे?
1: आप ही की पसंद का कोई नगमा सुना देना।
0: आप हमारी पसंद का नगमा सुनेंगे? जरूर, आप तक जो है हमारी पसंद का नगमा पहुंचेगा, लेकिन अपने साथियों के नाम बताएं।
1: मेरे साथ है रियाज अहमद गोजर, नजीर अहमद गोजर, समीर अहमद गोजर और जावेद अहमद गोजर।
0: चलिए, आप और आपके सभी साथी एंजॉय करें ये खूबसूरत सा नगमा।
1: ओके, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: समीन, आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। हेलो, आपकी फरमाइश आकाशवाणी श्रीनगर से। ये प्रोग्राम आप हमारी प्राइमरी सर्विस से भी सुन सकते हैं, इसके अलावा आप FM 2 पे भी ये प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। हेलो, आपकी फरमाइश।
1: सलाम अलैकुम रोहित दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम साहिल डार
1: जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: बस अल्लाह का करम और आप बहन की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: इंशाल्लाह अल्लाह का करम ज़रूर हम सब पे बना रहे, और दुआएं भी बहुत ज़रूरत है।
1: जी बिल्कुल, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो आपने पहला प्रोग्राम किया तो वो बहुत ही अच्छा किया आपने।
0: थैंक यू सो मच
1: तो
0: साहिल।
1: सब लिसनर की यही राय है कि रोहित दीदी इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आसमान तक ले जाएगी।
0: इंशाल्लाह भाई, कोशिश तो रहेगी ज़रूर कि प्रोग्राम में जितना हो सके बेहतर से बेहतर करें। आप लिसनर्स जिनकी फरमाइशें इस प्रोग्राम में होती हैं वो अच्छे से एंजॉय करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। साहिल, आज क्या सुनेंगे?
1: पहले तो मैं एक गजल पेश करना चाहता हूँ।
0: ज़रूर।
1: जी, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे,
0: वाह।
1: मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। जड़ उखड़ने झुकाव है मेरी शाखों में, जड़ उखड़ने से झुकाव है मेरी शाखों में।
0: जी
1: दूर से लोग समर भर समझते हैं मुझे,
0: माशाल्लाह।
1: नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है, और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे।
0: वाह।
1: रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ, रोशनी सरहदों
0: पार भी
1: पहुंचाता
0: पहुंचाता हूँ।
1: हूँ। हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे,
0: अरे वाह।
1: उस पार है उनके लिए इस पार हूँ मैं, वो जो उस पार है उनके लिए इस पार हूँ मैं, और जो इस पार है उस पार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में डल जाता हूँ, मैं बदलते हुए हालात में डल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। जुर्म ये है कि अंधों में हूँ आँखों वाला।
0: जी,
1: शेर आप देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है। जुर्म ये है कि अंधों
0: अंधों
1: में
0: में हूँ
1: हूँ
0: आँखों वाला।
1: आँखों वाला, और सजा ये है कि सरदार समझते हैं मुझे।
0: अरे वाह वाह वाह वाह।
1: मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ, और ये लोग और असरार समझते हैं मुझे।
0: भाई वाह, क्या बात है
1: जी
0: साहिल, बहुत अच्छा लगा। आप बताएं आज
1: शुक्रिया
0: कौन सा
1: शुक्रिया।
0: नगमा सुनेंगे?
1: हम तो अक्सर अपनी फर्म पे ही रहते हैं। मैं हर बार यही कहता हूँ कि फरमाइश करना तो एक बहाना होता है, दरअसल हमें आपसे बात करनी होती है।
0: बिल्कुल सही भाई, इस खलूस और इस प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आज मैं अपनी फरमाइश आप पे ही छोड़ता हूँ,
0: जरूर हम
1: क्योंकि
0: जी
1: जो आपकी पसंद होगी इंशाल्लाह वो हमें भी पसंद आएगा और सारे सुनने वालों को भी।
0: चलिए, शुक्रिया इस इज्जत अफजाई के लिए। ज़रूर साहिल, आपके लिए एक खूबसूरत सा नगमा, बल्कि आप अपने साथियों के नाम भी बताएंगे,
1: जी
0: उनके लिए
1: बिल्कुल।
0: नगमा प्ले करने जा रही हूँ मैं।
1: सबसे पहले मेरे भाई दो मुश्ताक और इम्तियाज
0: जी
1: और एक गौडरा गांधर

0: आप समाप्त कर रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश। मेजबान थी रोहित मुश्ताक। आकाशवाणी श्रीनगर 11 बज रहे हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: जया भारती।

0: आप समाप्त कर रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश। मेजबान थी रोहित मुश्ताक। आकाशवाणी श्रीनगर 11 बज रहे हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: जय भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25

आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 2 पर। 11:10 हुए हैं। एक नज़र कल हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले चंद प्रोग्रामों पर। फनकार, ये प्रोग्राम सुनिए रात 9:30 पर। मेहमान हैं गुलकार और मौसीकार मुनीर अहमद मीर, मेज़बान हैं गुलाम रसूल आखून। हेलो महफिल गज़ल, उर्दू गज़लों की फरमाइशी महफिल आरास्ता होगी शब 10 बजे। महफिल की मेज़बान हैं इरम कुरैशी। हमारी नशरियात का आगाज़ सुबह 6:28 पर होता है। प्रोग्रामों के आगाज़ में आप सुबहगाही सुनेंगे 6:35 पर। परामिसु प्रोग्राम बराए रास्त नश्र होगा सुबह 7:10 पर। कल का प्रोग्राम आप सुनेंगे अपने मेज़बान आमिर अशरफ और सादत खान के साथ। जू और तो जहां और ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा 8:45 पर। सुबह 9 बजे नश्र होती हैं आज की सुर्खियाँ। कश्मीरी गजलें आपके लिए पेश करेंगे सुबह 9:30। सूफी सदा, सूफी बुजुर्गों की जिंदगी और तालीमात से आरास्ता ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है सुबह 10 बजे। प्रोग्राम में शायर कश्मीर पीरजदा गुलाम अहमद महजूर पे बात होगी। ये तहरीर है डॉक्टर शफी शौक की। बाहमी गुफ्तगू पर मबनी एक बराह रास्त शो नश्र होगा सुबह 10:30। पेश करेंगे सादत खान और नवाज शरीफ। अब्दुलरशीद हाफिज और साथियों से आप छकरी और उर्फ सुनेंगे 11:30 पर, दोपहर 2:30 पर और सपहर 4:30 पर। इनसे अब बतरतीब कलाम रहमान दारियल, कलाम अहद जरगर और कलाम सचक्राल सुनेंगे। बजमनिस्वा सजती है 12:40 पर। इसमें प्रोग्राम की मेहमान मुजीबा अख्तर के साथ गुफ्तगू होगी, मौजू खांदर। उमंग समय स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम पेश होगा 1:10 पर। गमी बानिंद खतर, इस प्रोग्राम में शाम 6:05 पर मामूल की नशरियात के अलावा बच्चों की हफ्तावार महफिल भी सजेगी फॉलोइंग टूर। और रात 8:30 पर जिला नामा पेश होगा, इसमें जिला पुलवामा के हवाले से बात होगी। समय ये हैं हमारे कल के चंद प्रोग्राम।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:13:43 हुए हैं। इसके साथ ही हमारी आज की ये मजलिस अब यहीं पे बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात के साथ सुबह 6:28 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शब बख़ैर। जय हिंद।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। आने वाले दो गीतों के बारे में आपको बता दूं, गीता दत्त की आवाज में अगला गीत आप सुनेंगे मदन मोहन का संगीत है, फिल्म का नाम है भाई भाई, और इसके बाद होगा फिल्म पेइंग गेस्ट से गीत, आवाज है किशोर कुमार की और संगीत एस जी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। तो इन दो गीतों का आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर, और वक्त हो गया है 11:20 और 9 सेकेंड।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिर

रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता जी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम है दिलेख मंदिर और संगीत है शंकर जय किशन का। वक्त हो गया है 11:35 और 8 सेकंड। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत, आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड है 100.1 MHz पर।

मजरू सुल्तानपुरी की लिखी हुई कव्वाली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी हुई लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में आपने सुनी मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, और आप सुन रहे हैं

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत और आज आपके साथ है अर्पना। अगले जो दो गीत आने वाले हैं वो दोनों गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और दोनों का संगीत आरडी बर्मन का है। पहला गीत होगा किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है अलग अलग। और इसके बाद जो दूसरा गीत आएगा वो है शब्बीर कुमार की आवाज में और फिल्म का नाम है बेताब। तो इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए। ये दोनों गीत जैसे मैंने बताया आनंद बख्शी के लिखे हुए हैं और संगीत आरडी बर्मन साहब का है।

11:55 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत का आज का ये आखिरी गीत होगा फिल्म नसीब से। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ संगीत गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आवाज है लता मंगेशकर की। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। हंसते मुस्कुराते रहिएगा और आकाशवाणी के संग रहिएगा हमेशा। अर्पणा को दीजिए इजाजत, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और गीत के बाद समाचार एफएम गोल्ड पर जरूर सुनिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह दो दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले की आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय के में दायर याचिका को में से एक में से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और तीन एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की भी कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में जीत हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तीन देवियां, आवाज है किशोर कुमार की।

चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, अपने होने का ही अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। कौन समझेगा, कौन समझेगा यहाँ सच की तह तक जाकर, हम तो बस बीच के किरदार किए जाते हैं। दिल में तूफान है, आंखों में ठहरती सी नमी, दिल में तूफान है, आंखों में ठहरती सी नमी, और लफ्जों से मगर बस मलाल किए जाते हैं, और लफ्जों से मगर बस मलाल किए जाते हैं। अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। अगला गीत फिल्म का नाम है जिद्दी, आवाज है लता मंगेशकर की।

कहां सवाब कहां क्या अजाब होता है, मोहब्बत में कब इतना हिसाब होता है। कहां सवाब कहां क्या अजाब होता है, मोहब्बतों में कब इतना हिसाब होता है। बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना, बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना। उदास रहने से चेहरा खराब होता है, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। उसे पता ही नहीं कि प्यार की बाजी

जो हार जाए वही कामयाब होता है, वही कामयाब होता है। बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश ना खो देना, उदास रहने से चेहरा खराब होता है, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शक्ति और आवाज है लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कहते हैं प्रेम को लिखना, प्रेम को कहना और प्रेम को बयां करना इस दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम। प्रेम को लेकर किसी ने कहा कि प्रेम कोई शब्द नहीं जिसे लिख पाओगे, प्रेम कोई अर्थ नहीं जिसे समझ पाओगे। ये तो धड़कनों में बहता स्पंदन का सफर है, बह गए तो बस बहते चले जाओगे। और प्रेम में परिपक्वता तभी आती है जब हम ये स्वीकार कर लें कि हर संबंध पर अधिकार नहीं होता, प्रेम की स्वतंत्र वृत्ति ही उसकी खूबी है। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर, कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। यहाँ छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है बोल राधा बोल, आवाज है सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में

0: सरार जुराव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा से कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा और डॉ निशिकांत दुबे को समिति में शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से विनोद श्रीधर तावड़े, सुजीत कुमार और उज्जवल देव राव निकम समिति के सदस्य हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo yesterday.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने की इस महफिल में जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, आवाज है लता मंगेशकर की।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी। वक्त नदियों को उछाले की उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले की उड़ाए पर्वत, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा

और अब वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी और आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत

0: दूतवाणी सरारजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का

0: अमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 66 श्रेणियों की नई सूची अधिसूचित की है। इसके साथ ही ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की चेतावनी है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन्स गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic Summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी अफर्म्ड that the relations between India and Nordic countries are set to usher in

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

कोई शाम तुम मुझे मुकम्मल कर दो, कोई शाम तुम मुझे मुकम्मल कर दो, मैं डूबते सूरज के बाद अपने चांद को देख लूं, मैं डूबते सूरज के बाद अपने चांद को देख लूं। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बन गया है एक पुल सा तुम्हारे और मेरे मन के बीच, बन गया है एक पुल सा तुम्हारे और मेरे मन के बीच, कुछ मेरी कुछ तुम्हारी, कुछ कही कुछ अनकही, यादों का पुल जो पाट देता है हमारे बीच की गहरी अनंत खाई जैसी दूरियों को। उस पुल के किनारे उग आई हैं मेरी बातें, उस पुल के किनारे उग आई हैं हमारी बातें, फूलों की तरह जिनकी खुशबुओं से भर गई हैं पुल के दरारें, खुशबुओं की तरह से खुशबुओं से भर गई हैं पुल की दरारें। ये पुल एक आश्वासन है कि तुम मेरे पास हो, क्योंकि यादों के पुल टूटा नहीं करते, यादों के पुल टूटा नहीं करते। अगला गीत, फिल्म का नाम है भीगी पलकें, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है धर्म कांटा, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

कभी जो दिल में था अब वो ख्याल नहीं आता, कभी जो दिल में था अब वो ख्याल नहीं आता, तुम्हारे बाद कोई भी सवाल नहीं आता। वो नाम जो धड़कनों में उतर गया था चुपके, अजीब है कि अब उसका ख्याल नहीं आता। मैं अपने ही साए से बात करती रहती हूँ, मैं अपने ही साए से बात करती रहती हूँ, मगर जवाब में भी कोई जवाब नहीं आता, मगर जवाब में भी कोई जवाब में था वो ख्याल नहीं आता, तुम्हारे बाद कोई भी सवाल नहीं आता। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है लोफर, आवाज है आशा भोसले की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार जुराव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिश

0: पेरिस, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी

0: निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 25 रन बनाए। आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order, and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital.

हमराही कार्यक्रम में युगल गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। बहुत से गीत और उनकी पंक्तियां दिल में जाके बस जाती हैं। ये गीत आपने सुना प्रोफेसर फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। मोहब्बत की तड़प ये कह रही है ना तड़पाओ, और सताने को अब तो विराम दो।

0: सच्ची मोहब्बत में वाकई ही असर होता है जो एक दूसरे की बात दोनों के दिलों तक पहुंच जाती है। खैर आपको बता दूं कि ये गीत राजकुमार फिल्म से था, हसरत जयपुरी के बोल थे और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आप सुनेंगे आराधना फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और युगल गीत आप सुन रहे हैं हम रही कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला गीत तेरे मेरे सपने फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। नीरज के ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है SD बर्मन ने।

दोस्तों, कुछ गीत तो वाक्य में ही हमारे मन को मोह लेने वाले होते हैं। जी चाहता है जब भी सुने साथ साथ गुनगुनाते भी रहें।

आधी फिल्म से ही अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गुलजार की शब्द रचना थी और संगीत से संवारा आरडी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ मधुमति फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

हरियाली और रास्ता। इस फिल्म से आपने अभी गीत सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरे जयपुरी ने शब्दों में पिरोया था और संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे नया दौर फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ है, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: हम रही कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गीत अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

जहाँ लगन लग जाती है वहाँ छूटती नहीं है। ये गीत आपने सुना काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ, आप पहचान जाएंगे इसकी धुन सुनकर और इस गीत में अपनी बात को कहने का अंदाज ही अलग है। लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ गीत है और फिल्म का नाम है चोरी चोरी। शैलेंद्र की शब्द रचना है और तर्ज बनाई शंकर जयकिशन ने।

आपके पीछा तो वही करेगा ना जो आपका अपना होगा। अरे कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ अनाड़ी फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जय की शंकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह दो दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में

यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है।

0: आज तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलेगी। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with the leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital, Rome, on the 5th and final leg of his 5-nation tour after concluding his visit to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Lok Sabha Speaker Om Birla has constituted the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sudhir Gupta has been appointed as the chairperson of the committee. The panel comprises 21 members from the Lok Sabha and 9 members from the Rajya Sabha. Members from the lower house include Kamaljeet Sehrawat, Bhai Jayant Pandey, and

अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आपके साथ रहूंगी 4:59 तक गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए फिर से मेरा नमस्कार।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और यहाँ तो गाने वाले का भी जवाब नहीं है। पेइंग गेस्ट इस फिल्म से गीत था किशोर कुमार का गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ चिराग फिल्म से, मोहम्मद रफी का गाया हुआ है और मजरू सुल्तानपुरी ने शब्दों में पिरोया, धुन बनाई है मदन मोहन।

0: भूल बने अंगारे, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना थी कल्याण जी, आनंद जी का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

वाकई में ही दोस्तों, हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हों तब भी लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं। अगर बुरा रास्ता मिल जाए तब तो मालूम ही है कि लोग कुछ कहेंगे। इसलिए जहां आपको लगे, आपका दिल माने कि आप सही हैं, वही काम कीजिए। ये गीत था अमर प्रेम फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हूँ ताजमहल फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी का गीत है और रोशन का संगीत।

अब अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ गीता दत्त की आवाज में। भाई भाई फिल्म से राजेंद्र कुमार ने गीत को लिखा है, धुन तैयार की है मदन मोहन ने। दोस्तों बहुत गीत ऐसे लगते हैं बहुत समय बाद सुन रहे हैं लेकिन आज भी दिलो दिमाग में तरोताजा रहते हैं।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं अपने दोस्त वंदना चुक के साथ।

दोस्तों, दोस्ती में ही ये उम्मीद की जाती है कि हमारा साथ वक्त पर कोई जरूर देगा। बहुत कम लोगों में से आप किसी पर अपना हक जता सकते हैं, वरना दुनिया में तो बहुत लोग हैं। जुर्म फिल्म से ये गीत था, साधना सरगम और कुमार सानू का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ गुमराह फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी की रचना है और रवि का संकेत।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था मेरे महबूब फिल्म से। शकील बदायूनी की रचना थी, नौशाद का संगीत। कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे हम दोनों फिल्म से ये गीत, मोहम्मद रफी और साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और जयदेव का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रांड गेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा

के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। ये योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च

0: किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo yesterday.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said, in past 10 years, bilateral trade between India and Nordic countries has increased about 4 times.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital, Rome, on the 5th and final leg of his 5-nation tour after concluding his visit to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. A grand cultural evening was held in Italy during Prime Minister Modi's welcome reception, bringing together a remarkable gathering of Indian classical musicians and dancers from across Europe in celebration of India's rich artistic heritage. Mr. Modi also received a warm welcome from the Indian diaspora at the hotel he's staying in Rome. Lok Sabha Speaker Om Birla has constituted the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sudhir Gupta has been appointed as the chairperson of the committee. The panel comprises 21 members from the Lok Sabha and 9 members from the Rajya Sabha. Members from the lower house include Kamaljeet Sehrawat, Bajayant Panda and Dr. Nishikant Dubey. From the Rajya Sabha, the committee includes...

दोस्तों समय हुआ है 5:11 और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी।

जब इंसान मन से धैर्य खो देता है, हार जाता है, तो बस एक ईश्वर के अलावा उसे कोई और रास्ता नहीं नजर आता।